सुप्रभात, ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। आज दिन गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की तिथि 4, तदनुसार 25 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:59 होने वाले हैं। अब शुरू होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार बुलेटिन।
1: समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4

0: प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश 4थे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: Good morning. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम खेती की बातें। आज सुनिए वार्ता सतत कृषि।

कृषक मित्रों जोहार। आज खेती की बातें कार्यक्रम के अंतर्गत बातें करेंगे सतत कृषि के बारे में। किसान भाई बहनों, सतत कृषि खेती की एक ऐसी आधुनिक समग्र प्रणाली है जो पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक लाभ प्रदाता और सामाजिक समानता को संतुलित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाए बिना और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए वर्तमान और भावी पीढ़ियों की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। आइए जानते हैं सतत कृषि की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और इनके लाभ क्या क्या होते हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण, यानी रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से बचकर मृदा अपरदन को रोकना तथा पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखना। दूसरा है जल संरक्षण, यानी ड्रिंक इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों के माध्यम से जल के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना है। तीसरा है मृदा स्वास्थ्य और पोषण, यानी फसल चक्र, कृषि वानिकी और जैविक खादों के उपयोग द्वारा मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना है। चौथा है आर्थिक व्यवहार्यता, यानी उत्पादन लागत कम करके किसान भाई बहनों की दीर्घकालिक आय सुनिश्चित करना है। भारत सरकार की इस संदर्भ में प्रमुख पहले क्या क्या हैं, इसके बारे में भी बातें कर लेते हैं। सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार कृतसंकल्पित है और इनके द्वारा कई योजनाएं और मिशन भी चलाए जा रहे हैं। इनमें पहला है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जिसे NMSA के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्षा आधारित क्षेत्रों का विकास और जल उपयोग क्षमता पर विशेष जोर दिया जाता है। इस मिशन की विस्तृत जानकारी राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन पोर्टल पर भी उपलब्ध है। पोर्टल पर जाकर आप संपूर्ण जानकारी इस संदर्भ में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे PKVS के नाम से भी जाना जाता है, यानी जैविक खेती को बढ़ावा देने वाली यह योजना किसान भाई बहनों को क्लस्टर यानी समूह में जैविक खेती करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है। तीसरा है प्राकृतिक खेती, यानी रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम करने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के माध्यम से देसी गाय आधारित खेती को प्रोत्साहित करना ही प्राकृतिक खेती का मुख्य लक्षण है। चौथा है सतत पहल, यह योजना कृषि और अन्य कचरे से बायोगैस या संपीड़ित बायोगैस बनाकर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देना है, ताकि कृषि में अग्रेतर बढ़ोतरी हो सके और केंद्रित योजना का भी लाभ मिल सके। किसान भाई बहनों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि आप सतत कृषि से संबंधित किसी विशिष्ट योजना, सरकारी अनुदान या जैविक खेती के प्रशिक्षण से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कृषि और किसान मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस संदर्भ में संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। सतत कृषि, इसी विषय पर बातें हो रही थी कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत। आप सभी किसान भाई बहनों को पुनः एक बार जोहार।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है चिंतन। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के लिए कुछ विशिष्ट नियमों और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना बेहद आवश्यक हो जाता है। इस संसार में कोई भी

व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सब कुछ जानता हो। हम जिससे भी मिलते हैं, हमारी मुलाकात जिस भी व्यक्ति से होती है, उससे हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है। इसलिए हमें हर तरह से दूसरों के दृष्टिकोण और उनकी अभिवृत्ति का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की बातें सुनने और उन्हें समझने के लिए हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को खुला रखना चाहिए। ये था आज का चिंतन।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए सुनते हैं देश वंदना।

अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे भजन। इसी के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है रामचरितमानस। कलाकार हैं सुरेश वाडकर, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

राजा जनक की यज्ञशाला जानकी के स्वयंवर के अनुरूप सजाई गई है। शुभ घड़ी जानकर राजा जनक ने सीता को यज्ञस्थल पर बुला भेजा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारत

के नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 से आप सुनिएगा श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप और हम। 7:20 का समय होगा लोकगीत का। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा भोजपुरी में गीत, कलाकार होंगे शंभुराम और साथी। बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि सुनेगा 7:35 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा आधुनिक गान, कलाकार होंगी सरस्वती मजुमदार। दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का समय होगा 7:50 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा डॉक्टर आर कुमार की भेंट वार्ता, सफेद दाग, सत्य और भ्रांतियां, इनसे बातचीत करेंगे राजेश कुमार।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 8 बजे से सुनने का समाचार प्रभात 8:15 का समय होगा मॉर्निंग न्यूज का। 8:30 से आप सुनेगा प्रादेशिक समाचार जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। फिल्म संगीत सुनेगा 8:45 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले सुबह 9 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 9:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना का। शास्त्रीय संगीत ये कार्यक्रम सुनेगा 9:30 से। कार्यक्रम में आज आप सुनेगा कृष्णा गांगुली का ख्याल गायन, राग होगा भोपाली तोड़ी और फिर सुनेगा पंडित उल्हास बापट का संतूर पर बजाया धुन।

10 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार सुनेगा। 10:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 10:10 से सुनेगा विश्व दर्पण। फिल्म संगीत सुनेगा 10:20 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले। दिन में 11 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 11:05 का समय होगा कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 12 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 12:05 का समय होगा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम भावगीत का।

12:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम में आज आप सुनेगा बुद्धादित्य मुखर्जी का सितार वादन, राग होगा शुद्ध सारंग। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दिन में 1 बजे से सुनेगा हिंदी में समाचार। 1:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का। 1:10 से सुनेगा प्रादेशिक समाचार जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। 1:20 का समय होगा फिल्म संगीत का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले दोपहर 2 बजे से सुनेगा मिड डे न्यूज। 2:15 का समय होगा दोपहर समाचार का। 2:30 से सुनेगा फिल्म संगीत।

2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनेगा 3 बजे से। 3:30 का समय होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम में, आज आप सुनेगा चंद कसले। कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। 3:45 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम में, आज आप सुनेगा मुंडारी में गीत। कलाकार होंगे थॉमस बाजराय और साथी।

शाम 4:02 से हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। ये थी कार्यक्रम संबंधी जानकारी।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप और हम।

0: हम आप और हम
1: चिट्ठी में जज्बात भेजते हैं, वो शब्दों में सौगात भेजते हैं, फासले जितने भी हमारे दरमियाँ वो खतों से मुलाकात भेजते हैं। जी हाँ, ऐसे ही प्यारे खतों और मुलाकातों का नाम है आप और हम। हाजिर हूँ आपके लिखे पत्रों और मेल के साथ, मैं निमिषा। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हमेशा की तरह आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे कार्यक्रम प्रमुख राजेश कुमार राय। राय सर, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार सर।
2: नमस्कार हमारे तमाम श्रोताओं को।
1: सर, जैसा कि आज भी हमारे पास बहुत सारे मेल और खत आए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहले मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है सिद्धगोड़ा जमशेदपुर से रेणुका जायसवाल जी का ये मेल।
2: अच्छा, क्या लिखती हैं रेणुका बहन?
1: रेणुका जी लिखती हैं, आकाशवाणी जमशेदपुर के सभी कर्मियों को मेरा सादर अभिवादन।
2: रेणुका जायसवाल जी को हमारी ओर से सपरिवार नमस्कार।
1: आगे इन्होंने अपने मेल में जिक्र किया है, मैं एक गृहिणी हूँ और विगत 33 सालों से रेडियो सुन रही हूँ, जब रेडियो एकमात्र मनोरंजन और ज्ञान का साधन होता था। उस दौर से मैं रेडियो से जुड़ी हुई हूँ और आज रेडियो की बदलती हुई तस्वीर मुझे सहज ही पत्र प्रेषित करने को अग्रसर कर रही है। मैंने रेडियो को जिया है और आज भी रेडियो के कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लेती हूँ। मुझे खुशी हो रही है कि योग दिवस के अवसर पर आपके केंद्र से जिन जिन कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया, वे सारे के सारे कार्यक्रम बेहद ही उम्दा थे। बहरहाल, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का योग को लेकर बढ़ाया गया यह कदम पूरे विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। आज के इस परिदृश्य में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से बीमारियाँ फैल रही हैं और उन पर पानी की तरह पैसे बहाए जाते हैं, फिर भी उन बीमारियों से इंसान को छुटकारा नहीं मिलता है, लेकिन एक योग ही है जो हमें पूर्ण रूप से निरोग रख सकता है। योग से अपनी काया को सुंदर और स्वस्थ रखें। धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद बहन रेणुका जायसवाल जी को कि आप बहुत पुरानी श्रोता है जैसा कि आपने लिखा है, और जो है आप रेडियो का लिखा है आपने कि उस दौर में एकमात्र मनोरंजन और ज्ञान का साधन था, उस दौर से आप रेडियो से जुड़ी हुई हैं। और आज आपने स्वयं लिखा है कि रेडियो की बदलती हुई तस्वीर आपको पत्र प्रेषित करने को, मतलब अपने विचार साझा इस मेल के माध्यम से ई पत्र प्रेषित करने को

0: अग्रसर कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने रेडियो के उस दौर को भी देखा है और अभी जो तकनीक के दम पर जो पूरे विश्व में हमारे कार्यक्रम लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुने जा रहे हैं वो भी आप इसको आनंद ले रही हैं, जैसा कि आपके शब्दों से लग रहा है। जहां तक आपने लिखा है कि निमिषा जी इन्होंने मूलतः इनके जो विचार हैं वो 21 तारीख को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, जो वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने इसको मनाना आरम्भ किया और इस वर्ष 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने मार्गदर्शन में कलकत्ता से इस बार प्रातः काल में योग दिवस के कार्यक्रमों का अगुवाई किया और पूरे देश को प्रेरित किया। इस वर्ष का थीम भी था कि बढ़ती उम्र के साथ योग कैसे अपनाएं और स्वस्थ रहें, हेल्दी एजिंग विथ योगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने जो और निमिषा जी हमने विभिन्न अपने जॉनर कार्यक्रमों में विशिष्ट श्रोता कार्यक्रमों में योग के विभिन्न पहलुओं पे हमारे कार्यक्रम हुए, जिसमें मैंने बढ़ती उम्र के साथ योग कैसे करें, गृहिणियां कैसे इसका फायदा उठा सकती हैं, युवा भी योग और प्राणायाम से कैसे जुड़े, तनाव मुक्त जीवन के लिए योग की क्या आवश्यकता है। तो योग की जो विभिन्न पहलू हैं उन विभिन्न पहलुओं को हमने अपने कार्यक्रमों में समावेशित करने की चेष्टा की। आप जैसी जो हमारी सुधी श्रोता है उनको कार्यक्रम पसंद आया ये जानकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से योग केवल किसी भी दिवस की तरह योग भी केवल एक दिन के लिए नहीं है, इसको हम अपने जीवन शैली में अपनाना है, दिनचर्या में अपनाना है। तो हम अपने कार्यक्रमों में आगे भी समय समय पर योग, प्राणायाम, ध्यान, इन सबसे संबंधित विभिन्न विशेषज्ञों की बातचीत अथवा कुछ विचार सम्मिलित करते रहेंगे। आप हमारे कार्यक्रमों से यूं ही अपना जुड़ाव बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: रेणुका जायसवाल जी के इस मेल के बाद अब बारी आती है एक चिट्ठी की, और ये चिट्ठी आई हुई है बेलमती हंसता जी का तिरिंग से।
0: अच्छा अच्छा, क्या लिखती हैं बेलमती बहन?
1: लिखती हैं, आकाशवाणी के सभी लोगों को मेरा प्यार भरा जोहार।
0: बेलमती हंसता बहन को भी हमारी ओर से सब परिवार नमस्कार जोहार।
1: आगे इन्होंने लिखा है, मैं आकाशवाणी जमशेदपुर को मोबाइल के माध्यम से सुनती हूँ और आपके कार्यक्रमों का आनंद लेती हूँ। मुझे खेती के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इस कार्यक्रम में कई वैज्ञानिकों की बातचीत प्रसारित की जाती है जो कि हमारे लिए काफी लाभदायक है। इस कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना कर वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग अपने खेतों पर करना चाहिए, जिससे फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी हो सकती है। खेती बाड़ी के अलावा इस कार्यक्रम में आप जो योजनाओं पर वार्तालाप प्रसारित करते हैं वह भी हम जैसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। मैं तहे दिल से आभारी हूँ आपके रेडियो की।
0: बेलमती बहन, वास्तव में हम लोग आभारी हैं आप जैसे नियमित और सुधी श्रोता का कि आप हमारे कार्यक्रमों में रुचि लेती हैं, खेती के कार्यक्रम भी आपको अच्छी लगती है, उसमें वैज्ञानिकों की बातचीत से आप बड़ा लाभान्वित होती हैं, जैसा कि आपने लिखा है, जानकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। निमिषा जी, जैसा कि ध्यान होगा कि अभी हम लोग बहुत ही विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला ही प्रसारित कर रहे हैं इतने कृषि जगत कार्यक्रम में, खेती की बातें में और अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों में कि प्रधानमंत्री खेत बचाओ योजना। इसमें क्या हो रहा है कि 12 वर्षों में सरकार ने जो कृषि को उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न किए हैं, जो जो नई नई योजनाएं लाई हैं, प्रोत्साहन किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो इन्होंने इस बहन ने वर्मी कंपोस्टिंग लिखा है, मतलब रासायनिक उर्वरक के बदले प्राकृतिक उर्वरकों के इस्तेमाल पे इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत जोर दी जा रही है, जिससे ताकि खेतों की उर्वरकता बनी रहे, गुणवत्ता बनी रहे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस तरह के कार्यक्रम हमारी ये जो बहन है जो ग्रामीण क्षेत्र से है उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारी बेलमती बहन जैसी जो श्रोता है और अन्य जो हमारे भाई है किसान भाई, उनको अच्छी लग रही होगी, लाभान्वित हो रहे होंगे और निश्चित रूप से ये जो है उत्पादकता को बढ़ाएं, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल को कम से कम करें, उसको नेचर कम की ओर, प्राकृतिक उर्वरक की ओर बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बेलमती बहन।
1: बेलमती हंसता जी के इस पत्र के बाद एक बार फिर से बारी आती है एक मेल की, और ये मेल आया हुआ है आकाश कुमार पांडे का, उषा मोड़ आदित्यपुर जमशेदपुर से।
0: अच्छा, क्या लिखते हैं आकाश कुमार पांडे जी?
1: आकाश जी लिखते हैं, आकाशवाणी जमशेदपुर के सभी प्रस्तुतकर्ता को मेरा नमस्कार।
0: पांडे जी को हमारी ओर से भी सपरिवार नमस्कार।
1: आगे इन्होंने जिक्र किया है, मैं आकाशवाणी जमशेदपुर के कार्यक्रमों को सुनता हूं और इनमें मेरी दिलचस्पी भी है। विगत महीने से मैं कार्यक्रम युवाणी में नए प्रेजेंटर को सुन रहा हूं। नए लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है। युवाओं से युवाओं के लिए कार्यक्रम प्रसारित किया जाना, आप अपने में एक अच्छी सोच लिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं को जो करियर गाइडेंस दिया जाता है वह निसंदेह काफी अच्छा है। ऐसे तो आकाशवाणी जमशेदपुर से प्रसारित हर कार्यक्रम अपने आप में बेमिसाल है। आप तमाम प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आकाश कुमार पांडे जी की, आप जो है जैसा कि आपके

0: आपके विचारों से लग रहा है कि आप युवा हैं और आप जो है लग रहा है अभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, जैसा आपके विचार से लग रहा है कि आप युवानी कार्यक्रम में जो तब्दीली आई है, जो नयापन आया है, उससे आप बहुत प्रसन्नचित हैं। और खास करके आपने कैरियर गाइडेंस की बात की है, तो निश्चित रूप से कैरियर गाइडेंस जो युवा है, युवानी कार्यक्रम ही निमित्त है जी, युवाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, युवाओं के लिए है और युवाओं के विचार भी उसमें होते हैं और युवाओं के लाभार्थ होता है। तो ये अच्छा लग रहा है आपको, अभी जो इसके कार्यक्रम अधिशासी राजीव रंजन तिवारी जी हैं, जो कार्यक्रमों का जो कैसे समन्वयन हो, किस तरह का उसमें विचार हो, किस तरह के विषय हो, ये सारी बातों को जो समावेशित कर रहे हैं, और जो नए प्रेजेंटर निश्चित रूप से उसमें जो हम लोगों ने पिछले दिनों में लिया था युवानी कार्यक्रम के लिए, जो नए समनुदेशिती को, तो नई आवाज, नई ऊर्जा और नई उत्साह के साथ ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है और हमारे श्रोताओं को अच्छा लग रहा है, जानकर हमें निमिषा जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, संतुष्टि है। लेकिन जैसा कि बार बार मैं बात को दोहराता हूँ कि और भी हम अपने श्रोताओं से आग्रह करते हैं कि वे अपने समालोचनात्मक विचारों से हमें अवगत कराएं, ताकि हम अपने कार्यक्रमों को और उत्कृष्टता प्रदान कर सकें।
1: आकाश कुमार पांडे जी के इस मेल के साथ ही हमें कार्यक्रम से विराम लेना होगा, चूँकि समय का इशारा है कि अब हम अपने श्रोताओं को चलते चलते कार्यक्रम का पता बता दें।
0: बिल्कुल,
1: अगर आप पत्र लिखते हैं तो हमारे कार्यक्रम का पता है, कार्यक्रम आप और हम द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी जमशेदपुर, पिन है 831013। और अगर आप मेल करते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है airjsrcbs@gmail.com। पत्र लिखें, मेल करें, मुझे और राय सर को इस साप्ताहिक कार्यक्रम आप और हम से अनुमति दें। नमस्कार। आप और हम, आप और हम,
2: आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों और ईमेल्स पर आधारित कार्यक्रम आप और हम, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए शंभुराम और साथियों की आवाजों में भोजपुरी में गीत।

एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं आधुनिक गान। कलाकार हैं श्रावंती मजुमदार।

श्रावंती मजुमदार की आवाज में आप सुन रहे थे आधुनिक गान। इसी के साथ बांग्ला गीतों का कार्यक्रम सुरांजलि अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है दैनिक कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में ये सुनते हैं डॉक्टर आर कुमार की भेंट वार्ता, सफेद दाग, सत्य और भ्रांतियां। इनसे बातचीत कर रहे हैं राजेश कुमार।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आज हम बातें करेंगे सफेद दाग के बारे में। सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों के मन में काफी सारी भ्रांतियां हैं। सच क्या है बताने के लिए आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर कुमार। डॉक्टर साहब, हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सफेद दाग वो है क्या, क्या इसके होने के कारण होते हैं और लोगों के बीच में क्या भ्रांतियां हैं।
1: सफेद दाग एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब, हमारे शरीर में बहुत ऐसे जगह पे सफेद सफेद सा दाग हो गया है
0: जी।
1: जब हम लोग उसे देखते हैं तो समझ में आता है कि जो हमारे शरीर को कलर प्रदान करती है मेलानिन, वो पिगमेंट लॉस हो गया है या डिस्ट्रॉय हो गया, जिसकी वजह से उस जगह का कलर चला जाता है और पेशेंट उसे सफ़ेद दाग के नाम से जानते हैं। इसका कारण आज तक खोज जारी है कि ये क्यों होता है, बट बहुत सारे पेशेंट में ऐसा देखा गया है कि उनकी जो ऑटोइम्यून सिस्टम, जो रोग से लड़ने की क्षमता है ना, जो कम हो जाती है, तो इस वजह से किसी किसी पेशेंट में होता है। किसी किसी पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि नाना दादी को एक छोटा सा पैच हुआ करता था तो हेरिडिटरी या जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो गया है, जिसकी वजह से आता है।
0: अच्छा।
1: और अभी तक सही मायने में देखा जाए तो इसकी खोज जारी है कि ये क्यों होता है, ये डॉक्टरों के लिए भी अनसुलझा सा बात है।
0: लोगों के मन में ये धारणा है कि ये छुआछूत वाली बीमारी है, ये कहाँ तक सत्य है?
1: एकदम गलत बात है। सफ़ेद दाग छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसे छूने से फैलता नहीं है। ये समाज के लोगों को इस चीज़ समझना चाहिए, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनसे निवेदन है कि बिना सोचे समझे किसी के लाइफ के बारे में ऐसा ना बोले जिससे उसे आगे चल के और तकलीफ हो।
0: ये त्वचा से संबंधित बीमारी है तो क्या इसका असर हमारे शरीर के किसी और अंग में पड़ता है?
1: ऐसा कुछ नहीं है। जब किसी को सफ़ेद दाग हो जाता है तो जहाँ पे है वो वहीं पे रहता है, किसी को बहुत तेज़ी से फैलता हुआ भी दिखता है। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि वो अपने डॉक्टर, नज़दीकी स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा के इलाज कराए। ये छुआछूत की बीमारी नहीं होने से और दूसरे पार्ट को भी इन्वॉल्व नहीं करता।
0: क्या दवाओं के दुष्प्रभाव से भी ऐसा होता है?
1: बहुत कम रिसर्च और रिपोर्ट है इसके बारे में। कारण तो मैं बताया ही कि अभी तक अननोन है। आसान है ट्रीटमेंट, जिसके डिस्कस हम करना चाहेंगे कि एक ऐसी बीमारी है जिसको हम लोग अभी चार तरह से इलाज करते हैं। अगर कोई पेशेंट से एक सिंगल पैच लेकर हमारे पास आता है तो उसे ठीक करना हमारे लिए बहुत आसान है। पहले हम लोग दवा देकर उसे ठीक करते हैं। दवा देकर नहीं ठीक होने से फिर उसे फोटोथेरापी या हम लोग नैरो बैंड थेरापी बोलते हैं, वो लाइट दिखाकर भी ठीक करते हैं। और अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो साथ में खाने की दवाइयाँ भी हम लोग ऐड करते हैं। इसके अलावा अभी हमारे पास नए नए लेजर्स भी आ गए हैं। साथ में जो लोग दो साल से इस बीमारी से परेशान है और एक सिंगल पैच है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ऐसे कंडीशन में हम उन्हें बताना चाहते हैं कि सर्जरी बहुत आसान है, आप इसे ऑपरेशन के द्वारा भी ठीक करा सकते हैं।
0: आपका कहना है कि अगर शुरुआती दौर में कोई इसका इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाए तो निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है?
1: एकदम सही बात है। शुरुआती जैसे ही आपको दिखाई देता है किसी भी तरह का दाग है तो तुरंत से डॉक्टर को दिखा ले।
0: अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या सलाह देना चाहेंगे जो सफेद दाग से पीड़ित हैं और समाज जिनको एक अलग नजरिए से देखता है?
1: देखिए, सफेद दाग का इलाज आज के डेट पे सभी पैथ में अवेलेबल है, चाहे होम्योपैथ जाए, एलोपैथ जाए, आयुर्वेद जाए, तीनों जगह में हर

0: डॉक्टर बोलते हैं कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। बट रही बात जल्दी ठीक करने की, तो आज के डेट पे भी एलोपैथ सबसे कारगर है। तो आप देख सकते हैं सभी पैथ को ये करके, बट तकलीफ होने पे या ज्यादा आपके मेंटली इशू बन रहा है तो आप जितना नियरेस्ट हो एलोपैथिक स्किन स्पेशलिस्ट से मिले तो बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, आपने सफेद दाग को लेकर काफी उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। उम्मीद है हमारे श्रोता इसका लाभ जरूर उठाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सफेद दाग, सत्य और भ्रांतियाँ, इसी विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आर कुमार की भेंट वार्ता। इनसे बातचीत कर रहे थे राजेश कुमार। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
5: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
4: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
5: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए, आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
6: नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
7: ज्ञान विज्ञान
8: इतिहास के पन्नों से,
9: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
10: मौसम का मिजाज,
7: अपने शहर की खबरें,
9: बातों मुलाकातों के साथ
10: सुरीला मनोरंजन
7: और भी बहुत कुछ।
6: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में दिन के 11:05 से 12 बजे तक
9: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
11: नमस्कार जमशेदपुर।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात और फिर 8:15 से मॉर्निंग न्यूज। 8:30 से हम आपको आकाशवाणी के रांची केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माई भारत स्वयं सेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखा

0: रावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभिडांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभिडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान

0: में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति, देश बंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रुपए की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन U10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के कलाकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मासिक निवृत्तिका यानी कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पात्र कलाकारों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों को 4,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जुडको द्वारा संचालित GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस आधुनिक परियोजना के तहत शहरी परिसंपत्तियों, सड़कों, जल निकायों और भवनों की सटीक डिजिटल मैपिंग और जियो टैगिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों को समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना के पाकुड़, गुड्डा और साहिबगंज जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि PVTG वर्ग के मतदाताओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने सभी अधिकारियों से नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा।
1: बैठक में आने वाली SAR के फॉरम में उनको जानकारी दिया, उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा ताकि एक भी पाप नागरिक का नाम छूटे नहीं, उसी सबका शामिल करा था, उसके लिए किया जा रहा। सभी प्रक्रिया में साथ में रहने के समय भी एक पारदर्शी का अनुकूल कार्यक्रम करा सकते हैं। इससे यह दूर इलाका है बरवा में, वहाँ पर वो कार्यक्रम कैसे चला रहा उसका दृष्टिक है, वो कार्यक्रम अच्छा भाव में किया जा रहा है, यहाँ का वो GLSO का बाई जा रहा है।
0: रांची के मोराहाबादी मैदान स्थित आर्यभट्ट सभागार में सिदो कानू कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जहां उपस्थित लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बिरसा हरित ग्राम योजना की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया।
2: बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत सभी जगह जहाँ जहाँ मैंगो का प्लांटेशन कराए, कृषि हॉर्टिकल्चर से भी जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग पीछे ला सकते हैं, जैसे कि मशरूम का भी आजकल काफी जो खेत बनाना पर उसमें अच्छे लोग खेती करते हैं, आमदनी कर रहे हैं।
0: कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी द्वारा जिले के सभी 6 प्रखंडों में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी बिजेश महाराणा ने विशेष रूप से भाग लेकर किसानों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार xhandle@AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो।

0: रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम परिसर में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर भव्य स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में उत्कृष्ट पथ विक्रेताओं को सम्मानित किया गया और डिजिटल लेनदेन पर जोर दिया गया। नगर निगम के सिटी मैनेजर कृष्णा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को ऋण देकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
1: पीएम स्वनिधि का जो प्रोग्राम था, इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन लोगों को 3 ट्रेंच का लोन दिलवाना था। साथ ही साथ कुछ ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं को पुरस्कृत किया गया जो बहुत अच्छा लोन चलाए। अभी जो ये महोत्सव था इसलिए सेलिब्रेट किया गया ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा योजना का अवेयरनेस फैला सके।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: राजधानी रांची में आज नशा मुक्त अभियान के तहत बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने हरी झंडी दिखाई। वहीं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान का मुख्य समापन समारोह आज सुबह 11 बजे से डोरेंडा के शौर्य सभागार में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें और फ्लैग मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
4: सभी लोगों से अपील करता हूं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्योहार को मनाएं और इसके लिए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। जितनी भी एमिनिटीज हैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को, चाहे नगर निगम को, PHD को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से त्योहार में कमी नहीं रखनी है।
0: 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से अगले 4 दिन उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, हालांकि शाम को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच जामताड़ा के चरकदाहा गांव में कल शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। राज्य के महज 8-9 वर्ष की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। कायना ने भुवनेश्वर के गुरुकुल टेनिस अकादमी में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देशभर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए कायना ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सीट गंवाए बिना यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 151 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 262 को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में बिहार मॉडल पर होगी राजस्व

वसूली, मिनरल राजस्व का लक्ष्य होगा दोगुना। हिंदुस्तान ने लिखा है सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में रांची केंद्र की टॉपर बनी राशि विजय। प्रभात खबर के शब्द हैं, कैबिनेट में गया था केंद्रीय भंडार से नमक खरीद का प्रस्ताव, विभाग ने बदलकर निजी कंपनी को दे दिया। दैनिक जागरण लिखता है नामांकन व टेंडर आवंटन में अनियमितता की शिकायत पर रिम्स में हुई छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रुपए की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्ण सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी देर में।

प्रस्तुत है फिल्म संगीत। मदन मोहन वो महान संगीतकार थे जिनकी धुनें ऐसी हैं जो किसी को भी संगीत से प्रेम करना सिखा सकती हैं। आज संगीतकार मदन मोहन की जयंती है, उन्हें हम याद कर रहे हैं उनके गीतों के जरिए, और सुनते हैं ये गाना।

1970 में आई थी दस्तक फिल्म, जिसका गाना भी आपने सुना। इस फिल्म के लिए संगीतकार मदन मोहन को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस गाने को गाया लता मंगेशकर ने और इस गाने को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने।

लैला मजनू फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज़ें थीं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। आनंद बख्शी के बोल थे और धुन बनाई मदन मोहन ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है, FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। एक रिपोर्ट।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जान माल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। वहीं वेनेसिस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुरंजना सुनेगा थोड़ी देर में।

0: नमस्कार जमशेदपुर, नमस्कार जमशेदपुर का एक अलग अंदाज,
1: ज्ञान विज्ञान
2: इतिहास के पन्नों से,
1: सेहत और बॉलीवुड की बातें,
0: मौसम का मिजाज,
1: अपने शहर की खबरें,
2: बातों मुलाकातों के साथ
0: सुरीला मनोरंजन
1: और भी बहुत कुछ।
0: आप सुनते हैं कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में
2: दिन के 11:05 से 12 तक
1: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से।
3: नमस्कार जमशेदपुर।
4: हेलो मन भावन, आप सुनेंगे नए अंदाज में मेरे यानी निमिषा के साथ। प्रत्येक रविवार दिन के 11 आकाशवाणी जमशेदपुर के विविध भारती केंद्र से 100.8 मेगाहर्ट्ज पर। आपके फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक बुधवार दोपहर 12 से 12:30 के बीच। हमारा टेलीफोन नंबर है 2960445 और कोड है 0657। तो आप भी जुड़ जाइए हेलो मनभावन कार्यक्रम से।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरंजना। स्वीकार कीजिए श्वेता का नमस्कार। श्रोताओं, आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पार्श्व गायक मोहित चौहान के गाए कुछ गाने। मोहित चौहान को रोमांटिक गानों के लिए जाना जाता है। सन 2015 में दिल्ली 6 के इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार मिला और ये गाना बहुत ही लोकप्रिय भी हुआ।

0: एआर रहमान के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे प्रसून जोशी का लिखा हुआ गाना। आवाज़ थी मोहित चौहान की, फिल्म थी दिल्ली सिक्स। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं पार्श्व गायक मोहित चौहान के गाए कुछ बेहद ही लोकप्रिय गाने। कार्यक्रम में हम लौटते हैं इस अंतराल के बाद।
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
2: हेलो डॉक्टर,
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
2: हेलो डॉक्टर,
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

अंतराल हुआ पूरा, अब आइए सुनते हैं जब वी मेट फिल्म का गाना। गाने के बोल लिखे इरशाद कामिल ने, धुन बनाई प्रीतम ने।

दिल तो बच्चा है जी, इस फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज़ थी मोहित चौहान की। इस गाने को लिखा नीलेश मिश्रा ने और धुन बनाई प्रीतम ने।

इसी गाने के साथ कार्यक्रम सुरंजना अब संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे पार्श्व गायक मोहित चौहान के गाए कुछ प्यारे से गाने। अब कार्यक्रम से श्वेता को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: FM के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुनेगा बस थोड़ी देर में।
1: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
2: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
1: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
2: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
4: 8700001-4242।

आप सुन रहे थे कृष्णा गांगुली का ख्याल गायन, राग था भोपाली तोड़ी। अब आइए सुनते हैं पंडित उल्हास बापट का संतूर पर बजाया धुन मिश्र खमाज।

आप सुन रहे थे पंडित उल्हास बापट का संतूर पर बजाया धुन मिश्र खमाज। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा

0: समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। यह अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और ऊर्जा का उपयोग तथा समानता और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी कराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। खेलों में ICC महिला T20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ग्रुप ए के इस मैच में थापेलो मासेको ने दक्षिण अफ्रीका के लिए एकमात्र गोल किया। इससे पहले आज सुबह मैक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने विश्व कप समूह चरण के 3 मैच जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ईरान में निरीक्षण करेगी और फीफा विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला में आज 7.2 और 7.5 तीव्रता के लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप आने के बाद देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। भूकंप के कारण राजधानी काराकास और आसपास के क्षेत्रों में कई इमारतें ढह गई हैं और बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिक्स ने विद्यार्थियों की कक्षाएं और गैर जरूरी गतिविधियां अगले आदेश तक स्थगित करने की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। अधिकारियों के अनुसार पहला भूकंप सैन फिलिप क्षेत्र में आया, जिसके केवल 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली भूकंप आया। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 6.9 थी। जापान के मौसम विभाग ने बताया है कि भूकंप का केंद्र इवाते प्रांत के तट से 50 किलोमीटर दूर समुद्र में था। टोक्यो में भी हल्के झटके महसूस किए गए। हालांकि सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है और न ही किसी के हताहत होने की खबर है। इस बीच जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूकंप के मद्देनजर एक कार्य दल का गठन किया है। विभाग ने और भूकंप के झटके आने की आशंका व्यक्त की है। प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में 3 प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप भी एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई राष्ट्रीय रणनीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य प्रतिकूल परिस्थितियों से उबरने की क्षमता मजबूत करना है ताकि कोई भी प्रतिद्वंद्वी, संकट या व्यवधान अमेरिका के प्रमुख हितों को प्रभावित न कर सके। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: फीफा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इससे पहले मैक्सिको ने आज सुबह मैक्सिको सिटी में चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच जीतकर पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला में एक के बाद एक शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त, राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अमल से पहले 3 दिन की यात्रा पर ब्रिटेन जाएंगे। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मोरक्को नॉकआउट चरण में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर से सावधान।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सुनिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो आपकी फरमाइश, हर मंगलवार रात 10 बजे से 11 बजे तक FM के 102.4 MHz पर। और हाँ, अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवाने के लिए हमें कॉल करें हर बुधवार दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच। हमारा फोन नंबर है 0657-296-0445। हेलो आपकी फरमाइश, संगीत वही जो आप चाहें।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700-001-4242।
4: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
6: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आज फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन है। इन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। करिश्मा कपूर का नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। फिलहाल ये जो गाना आप सुन रहे थे उसे हमने लिया था दिल तो पागल है इस फिल्म से। इस गाने को गाया लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गाने के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई उत्तम सिंह।

हम साथ साथ हैं, साल 1999 में आई सूरज बड़जात्या की फिल्म हम साथ साथ हैं बॉलीवुड की सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इसमें करिश्मा कपूर की चुलबुली अदाओं ने फैंस का दिल जीत लिया था। इसी फिल्म का गाना अभी आपने सुना। आवाजें थीं अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और अनुराधा पौडवाल की। गाने के बोल लिखे आर किरण ने और धुन बनाई राम लक्ष्मण ने।

यंगिस्तान फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे। आवाज थी अरिजीत सिंह की। गाने के बोल लिखे कौसर मुनीर ने और धुन बनाई जीत गांगुली ने।

एआर रहमान के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ गाना। आवाजें थी सोनू निगम, अलका याग्निक, बेनी दयाल और नरेश अय्यर की। फिल्म थी युवराज। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे फिल्म संगीत कार्यक्रम में लेते हैं अंतराल। बने रहिए आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ।

0: डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 06572960445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 06572960445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ। हेलो डॉक्टर,
2: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
3: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे तो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा, मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
2: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
3: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: अंतराल हुआ।

तमाशा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी मोहित चौहान की। गाने की बोली लिखी इरशाद कामिल ने और धुन बनाई ए आर रहमान ने। और इसी गाने के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

श्रोताओं, इस समय आप हैं आकाशवाणी जमशेदपुर के साथ। आपको याद दिला दें, आज शाम 6:30 से हम आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र लिए चलेंगे, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत बनाम बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे मैच का आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल आप सुनेंगे खेल की समाप्ति तक।

हम आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से रिले समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। आज संविधान हत्या दिवस है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। देश भर में आज इससे जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया

0: जिसमें गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। आव्रजन संबंधी औपचारिकताएं भी प्रस्थान बिंदु पर ही पूरी कर ली जाएंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर जाएंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य नेटवर्क को भी सक्रिय कर दिया है। इस बीच कई जगहों पर बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत हो गई है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों, विशेषकर अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 400 अंक की उछाल से 77,391 पर, जबकि निफ्टी 100 अंक से अधिक की वृद्धि के साथ 24,125 के आसपास कारोबार कर रहा था। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल कर पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। इससे पहले आज मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर अपने ग्रुप के सभी 3 मैच जीत लिए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 11:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर के साथ आज मैं हूं अनीमा। स्वीकार कीजिए नमस्कार, बल्कि प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, हम में से कई लोग ये मानते हैं कि खुश रहने का मतलब है जीवन में कभी भी चिंता, डर या दुख ना आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हर व्यक्ति को समय समय पर कठिन भावनाओं का सामना करना पड़ता है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन भावनाओं को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, जीवन हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलता। कभी लोग हमारा साथ नहीं देते, कभी परिस्थितियां बदल जाती हैं और कभी मेहनत का परिणाम हमें देर से मिलता है ना? ऐसे समय में हम घटनाओं को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सोचने और प्रतिक्रिया देने के तरीकों को जरूर बदल सकते हैं। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं ना, तो शुरुआत में सब कुछ बहुत ही आसान और उत्साहजनक लगता है। कुछ समय बाद ऐसा दौर आता है जब मेहनत बढ़ती है, परिणाम कम दिखते हैं। यही वो समय है श्रोताओं, जब हम मन से हार मानने लगते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं वे अक्सर सफलता के करीब पहुंचते हैं। श्रोताओं, अक्सर लोग एक दिन में अपने जीवन को बदल देना चाहते हैं। वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद थककर रुक जाते हैं। तो इसलिए छोटे बदलाव करें, जैसे रोज कुछ मिनट पढ़ना, थोड़ी देर टहलना या कोई छोटा सा नया काम शुरू करना। यही छोटे कदम बड़े बदलावों की नींव बनते हैं। अपने डर, चिंता और दुख से हमें बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए। जीवन की जटिलताओं के बीच छोटी छोटी बातें हमें संभालती हैं, हौसला देती हैं।

आप सुन रहे थे डोर फिल्म का ये गाना, शफकत अमानत अली की आवाज़ में। गीतकार थे मीर अली हुसैन और संगीत से सजाया था सलीम सुलेमान ने।

समुद्र की लहरों से लड़कर जो दुनिया को जोड़ते हैं, वे नाविक ही हैं जो हर मुश्किल में अपना कर्तव्य निभाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस पर सभी नाविकों को सम्मान और शुभकामनाएं। नाविक सिर्फ जहाज नहीं चलाते, वे देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और दुनिया की रफ्तार बनाए रखते हैं। तूफानों से टकराकर भी जो हिम्मत न हारे, समुद्र की राहों के सच्चे योद्धा वही नाविक कहलाए। श्रोताओं, हर वर्ष 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार, परिवहन और समुद्री सुरक्षा में नाविकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देना है। दुनिया के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है, जिसे सफल बनाने में नाविकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज का ये दिन लोगों को नाविकों के कठिन परिश्रम, समुद्र में लंबे समय तक रहने की चुनौतियों और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनके योगदान के प्रति जागरूक करता है। नाविक हमारे वैश्विक व्यापार की जीवन रेखा है। उनके समर्पण और साहस का सम्मान करना हम सभी का कर्तव्य है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा ये गाना, किशोर कुमार की आवाज में, खुशबू फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के इस मोड़ पर अगर आपसे कुछ सेहत की बातें कर दी जाए तो कैसा रहेगा? आज सेहत की बात में हम आपसे करेंगे दर्द निवारक गोलियों के बारे में। श्रोताओं, हर दर्द की दवा गोली नहीं है। दर्द निवारक गोलियां भले ही दर्द में राहत दिलाती है, लेकिन इनका ज़्यादा सेवन कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। सिर दर्द हुआ तो दर्द निवारक गोली ले ली, कमर दर्द हुआ तो दवा खा ली, घुटनों में तकलीफ हुई तो फिर एक गोली। आजकल दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए दर्द निवारक गोली का इस्तेमाल आम बात हो गई है ना? खास तौर पर शारीरिक गतिविधियों में कमी के कारण गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याएं अब कम उम्र में भी देखने को मिल रही है। ऐसे में बहुत से लोग दर्द की वजह समझने के बजाय सीधे दर्द निवारक गोली लेना शुरू कर देते हैं। दर्द को सिर्फ तात्कालिक राहत के नज़रिए से न देखने के बजाय उसके पीछे की वजह को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। लंबे समय तक दर्द निवारक दवाओं का सेवन शरीर को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। लगातार दर्द निवारक दवाएं लेने से पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंच सकता है पेट की अंदरूनी परत को, जिससे गैस, जलन, अल्सर और रक्तस्राव की समस्या हो सकती है। दवाइयों से किडनी की कार्यक्षमता जो है वो प्रभावित हो सकती है और किडनी रोग का खतरा बढ़ सकता है। कुछ दर्द निवारक दवाओं का अधिक सेवन लीवर पर दबाव डाल सकता है, जिससे उसे नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। कुछ दर्द निवारक दवाएं लंबे समय तक लेने पर उच्च रक्तचाप, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा सकती है। मतली, उल्टी, कब्ज या दस्त जैसी शिकायतें बढ़ सकती हैं लंबे समय तक दर्द निवारक दवाइयों का सेवन से। कुछ दर्द निवारक दवाइयां खून को जो है वो पतला कर सकती हैं, जिससे चोट लगने पर रक्तस्राव अधिक हो सकता है। दर्द अस्थायी रूप से दब जाता है दर्द निवारक गोलियां लेने से, लेकिन बीमारी का असली कारण पहचानने और उसका इलाज कराने में देरी हो सकती है। आप दर्द निवारक गोलियों के

बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दर्द निवारक दवा नहीं लेनी चाहिए। अगर दर्द बार बार हो रहा है या लंबे समय तक बना रहता है तो जांच कराना आवश्यक है। श्रोताओं, दर्द असहनीय होने पर ही डॉक्टर के निर्देशों के अनुसार ही दवाइयाँ लें। अलग अलग दर्द निवारक दवाओं को एक साथ बिल्कुल भी न लें। पर्याप्त पानी पीकर शरीर को हाइड्रेट रखें, जिससे किडनी पर अनावश्यक दबाव न पड़े। बहुत सारी बातें आपसे हो गई और अब आप बारी है आपको एक प्यारा सा गीत सुनवाने का, है ना? लीजिए सुनिए दम लगा के हईशा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना मोनाली ठाकुर की आवाज़ में। गीत लिखा है वरुण ग्रोवर ने और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर। हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। मन की बात, प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें। मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।

अंतराल के बाद कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। कार्यक्रम के साथ आज मैं हूं अनिमा। दिन के 11:34 हो रहे हैं। श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं सिनेमा के सबसे महान और मधुर संगीत निर्देशक मदन मोहन को। आज है उनका जन्मदिन। उनका पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। अपनी करियर की शुरुआत में वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट थे, लेकिन संगीत के प्रति उनकी गहरे लगाव ने उन्हें ऑल इंडिया रेडियो से जोड़ दिया। उन्होंने कोई औपचारिक संगीत शिक्षा नहीं ली थी, बल्कि दिग्गजों को सुनकर और संगीत की समझ विकसित करके महारत हासिल की थी। उन्हें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद जैसे गायकों की आवाज़ में सदाबहार गीत रचने के लिए जाना जाता है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय गीतों में आपकी नज़रों ने समझा, प्यार के काबिल मुझे, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं और लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो शामिल हैं।

श्रोताओं, संगीतकार मदन मोहन के निधन के दशकों बाद निर्देशक यश चोपड़ा ने उनकी अनसुनी और अप्रयुक्त धुनों का इस्तेमाल करके वीर ज़ारा फिल्म का संगीत तैयार किया था, जो एक बहुत बड़ी संगीतमय सफलता साबित हुई।

आप सुन रहे थे संगीतकार मदन मोहन के संगीत निर्देशन में वीरजारा फिल्म का ये गाना। गीतकार थे जावेद अख्तर, आवाजें थी लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की। और इससे पहले हमने आपको सुनवाया मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजा महेंद्र अली खान का लिखा गाना, लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म का नाम था वो कौन थी। श्रोताओं, आज है अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्मदिन। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में 1991 में फिल्म प्रेम कैदी से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद उन्होंने फिल्म राजा बाबू, कुली नंबर वन, राजा हिंदुस्तानी और दिल तो पागल है जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शानदार अभिनय किया। फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए उन्हें पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्हें दिल तो पागल है के लिए फिल्म फेयर और फिल्म फिजा के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमारी ओर से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको सुनवाते हैं करिश्मा कपूर अभिनीत राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गाना।

आप सुन रहे थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये प्यारा सा गाना अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीतकार थी समीर, संगीतकार नदीम श्रवण। और अब चलते चलते मौसम की जानकारी हमारे श्रोताओं को दे दी जाए। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवाती और राजस्थान से पश्चिम बंगाल तक फैला मानसून का टर्फ झारखंड में नमी ला रहा है। इस वजह से कुछ क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मानसून अब राज्य के अधिकांश हिस्सों में सक्रिय हो चुका है और अगले 2 से 3 दिनों में इसके और मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के पहले सप्ताह में अच्छी बारिश की संभावना जताई जा रही है। और आज के तापमान की अगर बात करें तो आज का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये आखिरी गाना।

अमित कुमार की आवाज़ में आप सुन रहे थे तेरी कसम फिल्म का ये गाना। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। और इस गाने के साथ ही कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

कार्यक्रम नमस्कार जमशेदपुर अभी आप सुन रहे थे। हमारी से सभा में दिन के 12:05 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम 2.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित लोगों ने बहुत काम किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया और राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और

नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जांच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 12:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं,

श्रोताओं, प्यार के कई रंग रूप होते हैं। प्यार के बिना ये जीवन का सफर कठिन हो जाता है। जीवन के सफर में कोई प्यारा सा साथी हो तो फिर क्या कहने। जैसे जीवन के लिए सांसों की जरूरत होती है, वैसे ही आशिकी के लिए सनम तो चाहिए।

श्रोताओं, सांसों के सफर में किसी का साथ हर किसी को चाहिए। अंधेरी सुनसान राहों पर कोई रोशनी चमकती है, मन उजालों से भर जाता है।

खुशबू तेरे प्यार की मुझे महका जाती है, खुशबू तेरे प्यार की मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस तो बहुत देर लेती है आने में, सांस तो बहुत देर लेती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आती है।

श्रोताओं, शीर्षक गीत के आज के इस कार्यक्रम में आज का हमारा शीर्षक था सांस। सांस शीर्षक गाने आपको जरूर पसंद आए होंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहरहाल आज इस कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गाने आपने सुने, फिल्में थी बदलते रिश्ते, आशिकी और प्यार हो गया और जब तक है जान। इन गीतों के लिए आवाजी थी लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, कुमार सानू, अलका याग्निक, श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की। गीतकार थे अनजान, समीर, जावेद अख्तर और गुलजार। संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, नदीम श्रवण, नुसरत फतेह अली खान और एआर रहमान ने। इसी के साथ फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम शीर्षक गीत अब संपन्न हुआ। आपने ट्यून किया है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में श्रोताओं लीजिए सुनिए बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन, राग है शुद्ध सारंग।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे राग शुद्ध सारंग में बुधादित्य मुखर्जी का सितार वादन। शास्त्रीय संगीत का यह कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 1 बजे हिंदी में समाचार, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार। अपने राज्य केंद्र से रिले कर प्रादेशिक समाचार हम आपको सुनवाएंगे दिन के 1:10 पर। अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। समाचारों के बाद दिन के 1:20 का समय होगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। तो अभी आइए आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली

0: नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों की दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के चैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों के लिए दीक्षांत सलामी। वन्यजीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय और संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस दौर ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति का 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों के दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जांबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। धनबाद के कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई।
2: 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, आयुष्मान 5 लाख रुपया निशुल्क इलाज का मामला हो, उजला गैस सिलेंडर देना हो या फिर घर घर नल जल लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर हो, ये यात्रा 2047 तक चलाते रहनी है।
0: रांची में वन्य जीव अपराध नियंत्रण

0: ब्यूरो और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्गों समेत डाक व कुरियर सेवाओं पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों से आपस में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करने को कहा। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए विमानपतन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। हवाई अड्डे के आसपास विशेष रूप से बिरसा चौक और हीनू क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने वाले अनाधिकृत केंद्रों और बुच्चड़ खानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पक्षियों को आकर्षित होने से रोकने के लिए नगर निगम को खुले नालों को जल्द ढकने और ऊंची इमारतों पर अवरोधक लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के मुरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से आज युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक विशेष जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने आगाह किया कि नशा आज युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है।
1: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पर झारखंड ने शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
0: दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत में किसानों ने सामूहिकता से समाधान की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दो गांवों के किसानों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जेसीबी मशीन की मदद से जल निकासी नाली को साफ कराया है। इससे क्षेत्र के करीब 150 बीघा जमीन से जल जमाव की समस्या दूर हुई है और 6 वर्षों के बाद यह भूमि दोबारा खेती के योग्य बन सकी है। किसानों के इस सामूहिक प्रयास को पूरे जिले में सराहना हो रही है। राज्य सरकार ने बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर और सीतानाला कोल ब्लॉक के खनन पट्टा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दी गई इस स्वीकृति से दोनों ब्लॉकों के विशाल क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं में खुशी का माहौल है।
2: चंदन क्यारी में दो कॉल ब्लॉक खुला, एक पर्वतपुर एक सीतानाला। तो सीतानाला में जो रहत है जमींदाता है उनको भी उसी रूप से नौकरी मिलेगा जिस रूप से यहाँ पर कॉल ब्लॉक में मिलना है। इसमें पिछला एक साल हमारा काफी मेहनत किए हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही योगदान है और उनके योगदान के तहत ही आज कॉल ब्लॉक का स्वीकृति हुआ है जिसमें हमारा सीतानाला भी एड हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,25,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही उमस भरी गर्मी के बाद आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज गर्जन और हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए रांची, खूंटी, बोकारो और रामगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों में तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। छत्तर मांडू इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथि

ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के जैप वन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों की ली दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। अंत में इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 1:20 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे बस थोड़ी देर में।

0: Akashvani at 90.
1: जलवायु और अर्थव्यवस्था, यह यूनेस्को का संदेश है। आज भी दुनिया की अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन पर आधारित है। 31% तेल, 27% कोयला और 25% प्राकृतिक गैस। इसके मुकाबले हाइड्रो, सौर, पवन और जैव ऊर्जा जैसे स्वच्छ स्रोत सिर्फ 17% हैं। जीवाश्म ईंधन का संग्रह दशकों तक रहने का अनुमान है, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल जलवायु परिवर्तन को और बढ़ाएगा। इसलिए हमें जल्द ही इसे रोकना होगा। यदि हम जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं करते तो इसे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आर्थिक विकास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि उत्सर्जन ना बढ़े और पानी, भोजन और ऊर्जा की सुरक्षा बनी रहे। हरित प्रौद्योगिकरण का उपयोग करने से विशेषकर युवाओं के लिए कई नौकरियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, महासागरों में अत्यधिक गतिशील ऊर्जा होती है जो भविष्य में हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी कर सकती हैं।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज बात ही संगीत

गेटवे ऑफ इंडिया, इसी फिल्म का गाना श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण, संगीत से सजाया था मदन मोहन ने। बॉलीवुड के बेहतरीन संगीतकारों में मदन मोहन का नाम ना लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने 50 से 70 के दशक में हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक गीत दिए।

लता मंगेशकर की आवाज़ में श्रोता सुन रहे थे चिराग फिल्म का ये गाना। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ, संगीतबद्ध किया था संगीतकार मदन मोहन ने। बॉम्बे टॉकीज फिल्म कंपनी के निर्देशक राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली के बेटे थे मदन मोहन। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा ग्लैमर की इस दुनिया में कदम रखे, लेकिन फिल्मी दुनिया का आकर्षण मदन मोहन में इतना ज़बरदस्त था कि उन्होंने सेना की नौकरी छोड़कर ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ ज्वाइन कर लिया। यहाँ काम करते हुए उन्हें न केवल संगीत राग रागनियों का ज्ञान

ज्ञान मिला, बल्कि देश के शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, गायक गायिकाओं, वादक और संगीतकारों के संपर्क में आकर उन्होंने बहुत कुछ सीखा।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे हंसते ज़ख्म फिल्म का ये गाना। गीत रचना कैफी आज़मी के थे और संगीत बज गया था मदन मोहन ने। श्रोताओं, अपने समकालीन संगीतकारों में मदन मोहन भीड़ में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। गीत की रचना और शब्दावली पर उनकी पैनी नज़र रहती थी। वे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ गीतों को सुरबद्ध करते थे। पार्श्व गायकों के प्रति उनके मन में सम्मान होता था और आत्मीयता के साथ उनसे गवाते भी थे। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए मदन मोहन और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दस्तक फिल्म का ये गाना।

लता मंगेशकर को मदन मोहन सदैव बहन मानती थी और बदले में लता मंगेशकर उन्हें जीवन भर मदन भैया पुकारती रही। लता मंगेशकर ने एक बार कहा था कि दूसरे संगीतकारों ने मुझे गाने दिए हैं, जबकि मदन भैया ने

अनपढ़ फिल्म का गाना भी आप सुन रहे थे श्रोताओं, लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत रचना राजा मेहंदी अली खान के थे और संगीत बज गया था संगीतकार मदन मोहन ने। शानदार संगीतमय सफ़र तय करते हुए संगीत निर्देशक मदन मोहन 14 जुलाई 1975 को दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन उनकी धुनों का ही कमाल था कि साल 2004 में आई फिल्म वीर ज़ारा में इस्तेमाल हुआ। दरअसल मदन मोहन ने यह धुन जावेद अख्तर को सुनाई थी और इसी धुन के लिए जावेद अख्तर ने फिल्म वीर ज़ारा के गीत लिखे।

लता मंगेशकर और सोनू निगम की आवाज़ों में आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म का ये गाना। गीत लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे थे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गीतों को। आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से फिल्म संगीत आप फिर से सुन सकते हैं दिन के 2:30 पर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जहां से आप सुनेंगे दिन के 2 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार बुलेटिन। तो अभी आइए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: South Africa advanced to the knockout phase of the FIFA World Cup for the first time with a 1-0 victory over South Korea in Monterrey this morning. In men's cricket, India A were 173-2 in the opening session of day one of the first multi-day test match against Sri Lanka A at the Galle International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. In the ICC Women's T20 World Cup, India will take on Bangladesh in the Group A clash at the Emirates Old Trafford in Manchester today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. Harmanpreet Kaur, led women in blue, are currently placed second in Group A, having won 2 out of 3 matches. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% higher in the afternoon session today. The Sensex climbed 575 points to 77,566, while the Nifty jumped 173 points to 24,195 when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Samvidhan Hatya Divas being observed today. Prime Minister Narendra Modi pays homage to those who defended democratic values during the emergency. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar calls for stronger collaboration amid global challenges, invokes Vasudhaiva Kutumbakam at Jeju Forum in South Korea. BRICS Energy Ministers meeting begins in Gurugram under India's BRICS 2026 chairship. Powerful earthquakes strike Venezuela back-to-back, causing multiple building collapses. State of emergency declared. South Africa advanced to knockout stage of FIFA World Cup for first time, defeating South Korea 1-0 in Monterrey. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मोंटेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बेहद, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, 1 बरस बीत गया। 1 बरस।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का

0: एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
1: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
2: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
3: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
2: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुम्बकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
4: The global south should be enabled.
5: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन DC में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जेकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ED ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्रीमान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों

0: द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फॉरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2 गुनी से अधिक हो गई है।
1: अगले 6 हफ्ते में हम 6 नए डेस्टिनेशन को मॉडल में ही कन्वर्ट करके वो सारे एयरपोर्ट्स को भी इसी तरह वो ताकत भी हम देने वाले हैं। और यही विश्वास हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की इस सेक्टर पे रखते हैं कि एक सिविल एविएशन सेक्टर में एक रिफॉर्म, एक कार्यक्रम अगर करते हैं तो इसका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पे पड़ता है।
0: यह सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के अंतर्गत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले

क्षेत्र झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार बुलेटिन आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:30 हुए हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे थोड़ी देर में।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हेलो डॉक्टर,
1: आकाशवाणी जमशेदपुर का लाइव फोन इन कार्यक्रम
0: हेलो डॉक्टर।
1: सुनिए हर माह के आखिरी बुधवार को रात 8 बजे से FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर विशेषज्ञों से कीजिए बातें लाइव कार्यक्रम के दौरान और पाइए अपनी समस्याओं से निदान। तो कॉल कीजिए साथियों 0657-2960-445 पर। नंबर एक बार पुनः सुनिए 0657-2960-445 और बातें कीजिए लाइव डॉक्टर के साथ।
0: हेलो डॉक्टर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लाल सिंह चड्ढा से फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की आवाजों में। गीत लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत से सजाया था प्रीतम ने। कार्यक्रम का अगला गाना है कोई जाने ना, इसे फिल्म से हमने दिया है। आवाजी हैं वदाली भाइयों की, गीतकार हैं आरपी दीवाना और संगीत बद किया है विक्रम नागी ने।

लखविंदर वडाली और नीति मोहन की आवाज़ों में आप सुन रहे थे कोई जाने ना फिल्म का ये गाना। गीत लिखा था आरपी दीवाना ने और संगीत से सजाया था विक्रम नागी ने।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं धड़क टू फिल्म का ये गाना, श्रेया घोषाल और जुबिन नौटियाल की आवाज़ों में। बोल रश्मि विराग के थे और संगीतबद्ध किया था जावेद मोहसिन ने।

आप सुन रहे थे सुबेदार फिल्म का गाना श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज़ों में। गीत रचना आमिर खुसरो के थे और संगीत से सजाया था अक्षय ने। कार्यक्रम के आखिर में श्रोताओं दीजिए सुनिए एनिमल फिल्म का ये गाना।

श्रेयस पुरानी के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे सिद्धार्थ गरिमा का लिखा ये गाना अरिजीत सिंह की आवाज़ में एनिमल फिल्म से, और इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। दिन के 2:55 बज जाते हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और विजेताओं को पुरस्कृत किया। नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मैराथन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के युवाओं ने हिस्सा लिया और हर कदम के साथ झारखंड को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने का संकल्प लिया।
1: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर झारखंड में शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
0: उपराजधानी दुमका में मादक पदार्थों के सेवन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति आमजन विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज मिनी दौड़ का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना करते हुए कहा कि जागरूकता ही नशा उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है। मिनी दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए संकल्प लिया तथा लोगों को मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी को देवघर से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिसंबर तक इन तीनों शहरों के लिए देवघर से सीधी उड़ान शुरू होगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि हर साल गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु यहां आते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 90 युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के उपनिदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है।
2: हमारी जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनकी तरफ से डायरेक्शन आया था कि आप तो इंजीनियर को पढ़ा ही रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट करा ही रहे हो, बट अपने समाज के आसपास जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो आईटीआई पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कोर्स करो जिसके तहत उनको कुछ नौकरी मिलने की संभावना हो जाए। कि माइन सर्वेइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये सर्वेयर माइनिंग में भी काम कर सकते।
0: गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घटनास्थल पर पहुंची चौपारण थाना पुलिस और एनएचएआई की एम्बुलेंस टीम ने ट्रेलर में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, इस समय आपने ट्यून किया है एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र। दिन के ठीक 3 बजे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियां इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा, तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, X, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
2: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
3: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
2: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
3: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
2: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
3: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव

0: में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। गिजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
2: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
3: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
4: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा, समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
2: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
3: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
2: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
3: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
2: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
3: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
5: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
3: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
2: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
6: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ, वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
3: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी नमस्कार।
7: नमस्कार।
3: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
7: जी,
3: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं।
7: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियाँ हैं
3: जी,
7: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
3: जी,
7: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
3: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
7: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
3: युगल और सहभागिता पद्धति
7: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
3: जी,
7: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
7: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
3: हाँ हाँ, बताइए।
7: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
3: प्रश्नोत्तरी पद्धति
7: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
3: अच्छा।
7: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
3: जी,
7: वो बहुत ही शानदार है।
3: अच्छा
7: जी।
3: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
3: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
3: गिजू भाई के अनुसार
6: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए, जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
3: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
8: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
9: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का,

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। दिन के 3:30 हैं। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज लीजिए सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह को।

0: आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ सुमी गीत। सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 3:45 हुए हैं। समय हो गया है लोकगीत के कार्यक्रम का।
1: श्रोताओं, अभी जो आप ये गीत सुनेंगे, इस गीत में बताया जा रहा है कि फागुन माह पहुंच गया है और गांव के लोग शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर जा रहे हैं। शिकार के लिए हाथों में तीर धनुष लिए हुए हैं और फागुन के बाद ही तुरंत बरसात का मौसम आने वाला है और खेतों की जुताई कुड़ाई शुरू हो चुकी है और किसान हल ढोकर खेतों की ओर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं थॉमस बाजराय व साथियों की आवाज में ये लोकगीत।

प्रस्तुत गीत में नीले आकाश में छाए काले काले बादल और सूर्य चंद्रमा की चमक अंधकारमय लगती है। इसके साथ ही धरती की हरियाली बहुत ही मनमोहक सी दिखाई पड़ती है। ये सभी सौंदर्य हे ईश्वर तेरी ही सृष्टि का बखान करते हैं। इस धरती के सभी जीव जंतुओं को और समुद्र के सभी जीव जंतुओं को आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। हे ईश्वर तूने जाड़ा गर्मी बरसात अलग अलग मौसम बनाया है। तुम कहाँ हो? क्या तुम आसमान में हो या धरती में हो? हम तेरे मार्ग पर चलते हुए तुम्हें प्रणाम करेंगे।

श्रोताओं, प्रस्तुत गीत में छोटा नागपुर के लोग जो कि पहाड़ों में जंगलों में रहते हैं, वे कहते हैं कि हम मुंडा आदिवासी लोग एक साथ पहाड़ों जंगलों में रहते हैं और साथ ही खेतों खलिहानों में एक साथ काम करते हैं और इसके बाद शाम को अखाड़े में बाजा बजाते हैं, नाचते गाते हैं और आनंद मनाते हैं। तो आइए सुनते हैं थॉमस बाजरा व साथियों की आवाज में ये मुंडारी।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के जमशेदपुर केंद्र से एफएम के 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजने वाले हैं। अगला प्रसारण होगा आकाशवाणी के रांची केंद्र से। आप सुनेंगे समाचार मुख्यांश, उसके बाद शाम 4:02 पर आप सुनेंगे वीर सैनिकों को संबोधित हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स, जिसका प्रसारण होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अभी आइए आकाशवाणी के रांची केंद्र के प्रसारण में शामिल होते हैं और सुनते हैं समाचार मुख्यांश।

0: केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्टिका चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई, विजेताओं को पुरस्कृत किया और नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बैठक में संबंधित अधिकारियों तथा सीएसआर प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हील चेयर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बेंच डेस्क की कमी दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के मेदिनीनगर पांकी मुख्य पथ स्थित पोखराहा चौक के पास सड़क दुर्घटना में करार निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने आज पुलिस चौकी पर हमला कर जवानों के रहने के लिए लगाए गए टेंट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और गुजरात के सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के बाद आज सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित संबंधित पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के बाहर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। शव को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने संबंधित कंपनी से मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आर्टिस्टिकली ओरिएंटेड फैमिली जिसमें कि मूर्ता ज्यादातर लोग एकेडमिक्स और उससे जुड़े हुए अलाइड एस्पेक्ट्स में उन्होंने काम किया पूरा का पूरा. तो आई एम द एल्डेस्ट अमंगस्ट थ्री सन्स ऑफ माई पेरेंट्स.
1: जी
0: तो घर में सभी लोगों का बेसिकली अकेडमी की तरफ रुझान ज्यादा था. तो टू सेलेक्ट अ प्रोफेशन लाइक फोर्सेस इट वॉज अ लिटिल डिफिकल्ट एंड ऑकवर्ड वन फॉर एवरीबडी कि भाई ये कैसे. बट हाँ मेरा शुरुआत से ही मन था, आई वॉज एनसीसी कैडेट, तो बड़ा मन था कि हम फौज ही ज्वाइन करें. तो इसी से प्रेरणा लेते हुए देन आई क्लियर फॉर आफ्टर ड्यूइंग माय ग्रेजुएशन क्लियर फॉर कमांड डिफेंस सर्विसेज और फिर आई एम ए ज्वाइन किया. ज्वाइन करने के बाद में आई गॉट कमीशन इन द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री फ्रॉम इंडियन मिलिट्री अकेडमी. तो हमारी रेजिमेंट जो है एक बड़ी यूनिक रेजिमेंट है जिसमें कि सारे के सारे ट्रूप्स जितने भी हैं
1: जी
0: वो सारे के सारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ही आते हैं. वी हैव सब्जेक्ट्स फ्रॉम जम्मू से लेकर वैली तक पूरा का पूरा, प्लस हाईलैंडर्स भी हैं जैसे कि द्रास में कारगिल से लेकर इस साइड उड़ी और पुंछ तक का पूरा पूरा.
1: ओके, मतलब पूरा वो
0: हाँ, तो हमारी हमारा ट्रूप्स का जो कॉम्पोजिशन है वो कम्प्लीटली जेएनके का ही है. तो ये अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज है, यही हमारी ऑपरेशनल एज भी हमको मिलती है. इसी की वजह से हम ऑपरेशनली इतना अच्छा कर भी पाते हैं जेएनके में.
1: ओके,
0: क्योंकि आप उन लोगों के साथ में ऑपरेट कर रहे हैं जिनको जो कि उस टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से जानते भी हैं. तो इस तरह करते करते फौज में काफी टाइम कटा एंड देन आई वाज गिवन द टास्क टू सेट अप न्यू सैनिक स्कूल्स. तो वहां से एक एकेडमी के लिए ओरिएंटेड जर्नी भी आगे स्टार्ट हुई.
1: यानी कि जो एकेडमी का आपका जो फैमिली का रहा तो वापस
0: वो वापस घूम फिर के वापस
1: घूम फिर करके आया. लेकिन सर जिस तरह से आपकी शुरुआत हुई, जो आपने सर्व किया, जो सेंसिटिव एरियाज कहा जाए बहुत ही टफ, मतलब उनको फ्रंटियर्स कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अगर नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ही टफ रहा होगा, बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा. उसके बाद के तो टास्क बाद में आए, वो कैसा था?
0: बिल्कुल मिलिट्री के अंदर में इन्फेंट्री इज

0: जनरली द कटिंग एज जहाँ पे जिसको किसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं माना जाता है, तो इन्फेंट्री को सर्व भी करना पड़ता है पहाड़ों पे। तो जहाँ जहाँ पे यूनिट रही, जहाँ जहाँ पे हम लोग डिप्लॉय रहे, वहाँ वहाँ पे एंटी मिलिटेंसी और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में जो भी योगदान दे पाए हम लोग वो देते रहे। जी, तो डिफिकल्ट, इट इज इंडीड डिफिकल्ट, मतलब बहुत लॉन्ग टर्म टाइम तक आप कट ऑफ रहते हैं चीज़ों से।
1: अच्छा।
0: विंटर जो वैकेटेड पोस्ट होती हैं वहाँ, जहाँ से 5-5, 6-6 महीने भी आपको लग जाते हैं दोबारा वापस नीचे उतरने में, तो ऑपरेशनली इट्स अ डिफिकल्ट इन योर।
1: ओके, तो उसमें सर कोई ऐसा इंसिडेंट रहा होगा जो आज भी आपके साथ जुड़ा हो, आपको याद रहा हो, या आपको सताता हो, या आपको याद आता हो?
0: जी जी, देयर नंबर ऑफ सच इंस्टेंसेस। एक बार ऐसा था कि पोस्ट पे काफी टाइम रहने के बाद जब बर्फ बहुत ज्यादा पड़ जाती है
1: जी,
0: तो आपकी आंखें और आपका दिमाग अट्यून्ड हो जाता है टू सी, बिकॉज आप ऑपरेशन में भी उसमें जा रहे हैं, एम्बुश में भी उसी बर्फ में जा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज वाइट इन फ्रंट ऑफ यू, वेयरिंग वाइट क्लोथ, योर इग्लू इज वाइट, योर द आइस इन फ्रंट ऑफ यू इज वाइट। तो ग्रीनरी एक बहुत किसी भी इंसान के जीवन का बड़ा एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो पोस्ट से नीचे उतर के आने के बाद में नॉर्मल सब्जी खाना, लौकी को देखना, या चलती हुई बकरी और जानवरों को देखना, ये सब चीजें बड़ी अम्यूजिंग से लगने लगती है कुछ टाइम के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम डाउन एंड टेक अ विकेट, टेक अ ब्रेक ऑल्सो फॉर अ वाइल, बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इस तरह के दुनिया भर के तमाम इंसिडेंसेस हैं। ऑपरेशनली मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज वो चीज एक थोड़ा सा उसकी अलग सैंक्टिटी होती है, बट हाँ, फॉर एनी इंडिविजुअल इट इज अ यूनिक एंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ एंड एक्सपीरियंस, बड़ा ही अलग तरीके का।
1: तो आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी, VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, और आप बात करेंगे आगे कि किस किस तरीके के फेजेस आए उनकी लाइफ में, क्या क्या चैलेंजेस सामने आए, और कब उनको VSM से नवाजा गया। तो आप बने रहे हमारे साथ हमारे प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आकाशवाणी रेनबो पर। आप हमें सुन रहे हैं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी दुनिया भर में, और आप हमें SMS, आप हमें WhatsApp मैसेज कर सकते हैं 9868107070 पर, और साथ ही आप हमें कॉल करके भी बात कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान कर्नल वरुण वाजपेयी VSM से, नंबर है दिल्ली का कोड 011-2342-1085, 2342-1085.

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स, आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ। और आज के हमारे खास मेहमान हैं कर्नल वरुण बाजपेयी, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित। सर, बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर आपका हमारे शो संदेश टू सोल्जर्स में।
1: जी धन्यवाद, थैंक यू।
0: सर, हमने बात करी कि किस तरह से आपने शुरुआत करी, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका जो है वो शुरुआती एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि आपने कहा कि कहीं भी कोई फैमिली में भी दूर दूर तक कोई आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं था, तो ये काफ़ी पहला ही चैलेंज रहा आपके लिए। फिर उसके बाद आपने 3 नए सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करने में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया।
1: जी,
0: बल्कि मिजोरम का सैनिक स्कूल तो आपने सिंगल हैंडेडली ही खड़ा किया।
1: जी,
0: क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और कैसे आपने उनको टैकल करा और उसको कामयाब बनाया?
1: जी, मेरी पोस्टिंग सैनिक स्कूल गोपालगंज बिहार में एज अ रजिस्ट्रार आई थी, तो वहाँ पर तकरीबन 1.5 साल रहने के बाद में मुझे ये टास्क दिया गया कि मिजोरम में कैपिटल आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ ऑन द इंडो बर्मा बॉर्डर के पास में एक छोटा सा जिला है, इसका एक छोटा सा हैमलेट है बेसिकली, चिंगचिप करके, वहाँ पे आपको सैनिक स्कूल स्टैब्लिश करना है। तो फॉर मी, मेरे लिए बड़ा ही यूनिक सा एक्सपीरियंस रहा कि इतने ही सेक्लूडेड से एरिया में जाके, बट हाँ, गवर्नमेंट का विजन था कि भाई राष्ट्रीय भावना और ये अवसर सबको दिए जाएं, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कितना भी फार फ्लंग क्यों ना हो। तो इस उद्देश्य के साथ पे 2017 में मैं मिजोरम पहुंचा, और वहाँ पे चिंगचिप जगह है जो कि सरचिप डिस्ट्रिक्ट के अंदर में छोटा सा एक एरिया है, वहाँ पे हमने सैनिक स्कूल को स्टैब्लिश करने का बेड़ा उठाया। और तकरीबन साहब 7 महीने लगे हम लोग को, दिसंबर से लेकर अगले साल मई जून तक का, जिसमें बिल्डिंग भी बनवाई गई।
0: अच्छा।
1: जिन लोगों ने अपना लैंड डोनेट किया था उनको भी गवर्नमेंट ने इनकम पास किया साथ में, और हमने उन सबको जॉब भी दिए वहाँ पे।
0: अच्छा।
1: तो एक बार एक तरीके से स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के हमने सबको साथ में लेके काम किया।
0: साथ में लेकर
1: शुरुआत में बड़ी दिक्कतें भी आई, चर्च को एक कुछ अपने अप्रिहेंशन थे, बिकॉज दैट इज अ प्राइमरली अ क्रिश्चियन बिलीफ स्टेट, तो चर्च से हमको मैनेज करने में कभी कभी दिक्कतें भी आई। बट बाद में जब उनको लगा कि नहीं, यहाँ पे इनका पर्पस तो ये है कि भाई इससे लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को आगे फौज में अवसर बनने का, फौज ज्वाइन करने का अवसर मिलेगा, तो देन इट वॉज अ गुडविल विच वॉज एस्टैब्लिश। फिर चर्च ने ही हमारा बड़ा हेल्प भी करी कि बाद में स्कूल का इनॉग्रेशन करने के टाइम पे आप मतलब उन्हीं के बेंचेस, उन्हीं के वो टेबल तक आई। बट इट वॉज अ ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस अपने आप में। और सबसे अच्छी बात थी, सबसे बड़ा योगदान शायद चिमचक का ये रहा है कि स्कूल से शुरुआत हुई थी इंडियन आर्मी के अंदर में गर्ल स्टूडेंट्स को लेने की, जो कि बाद में एनडीए तक था। तो 2018 में हमारा पहला बैच आया था जिसमें लड़कियों को भी हमने शामिल किया था।
0: अच्छा।
1: इस तरीके से अभी सभी सैनिक स्कूलों में गर्ल कैडेट्स भी हैं और एनडीए में भी लड़कियां पास आउट हो रही हैं, आईएमए भी जा रही हैं।
0: अच्छा।
1: तो ये अपने आप में बड़ा सुखद और बहुत ही एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस था।
0: बिल्कुल, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे आपने बताया कि जो चैलेंजेस आपको सामने करने पड़े वो तो अब पहला स्कूल खड़ा करने में, तो क्या आगे जो आपने बाद में किए उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, क्या वो चैलेंजेस फिर से वही सब दोबारा से सामना करना पड़ा या आसान हो गया था?
1: नहीं, एक बार चीजों को कर लेने के बाद थोड़ा तो मतलब मनोबल बढ़ जाता है, चीजें आसान भी हो जाती हैं। अरुणाचल वॉज ओके, झुंझुनू हैड इट्स ओन चैलेंजेस, बिकॉज झुंझुनू क्या है, झुंझुनू एक ऐसा जिला है देश का जहाँ पे हर घर में फौजी है बेसिकली।
0: अच्छा।
1: तो अगर हम निकालें कि ऑन एवरेज दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फौजीज, इस अच्छा। जिले में सबसे ज्यादा फौजीज हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर में। तो यहाँ पे बच्चों को, उन क्लास 6 में जो बच्चे आते हैं वो बिल्कुल अपनी मदर के फोल्ड से निकल के बाहर आते हैं ना, कि घर में तो उनको हाथ से भी खाना खिला दिया जाता है कभी कभी। ऐसे बच्चों को स्कूल में ला के उनको सेटल करना, उनको बताना कि बच्चों कैसे उठना है, कैसे बिस्तर लगाना है, कैसे अपने शूज को पॉलिश करना है, कैसे अपने ड्रेस को लगाना है, कैसे

0: से यू हैव टू स्टे इन दैट स्टेट ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ऑल्सो, कैसे कैसे अपना अपनी दिनचर्या को आगे लेके आना है, पढ़ना कैसे
1: मतलब
0: है।
1: पूरा लाइफ
0: तो
1: स्टाइल आप
0: जी, तो सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी स्कूल को स्टैब्लिश करने में इस टाइप के ये होता है कि जब आप जाते हैं एज अ फाउंडर प्रिंसिपल, तो आपके साथ में आपके कुछ लोग ही होते हैं जो कि अलग अलग कॉलेज से पूल होके आए होते हैं।
1: ठीक है
0: फिर ग्रेजुअली धीमे धीमे भर्तियों के माध्यम से टीचरों को लिया जाता है, कुछ स्टाफ को लिया जाता है, उसके बाद में बच्चे आते हैं। तो इतने कम स्टाफ के साथ में उनका मेस चलाना, उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका पूरा मेडिसिन और सबका इंतजाम भी करवाना, डे टू डे चैलेंजेस आर मतलब एक फाउंडर प्रिंसिपल के तरीके से मेरे पास मेरा दिन शुरू होता था सुबह 6 बजे
1: जी
0: एंड आई टू वाइंड अप ओनली मतलब जब बच्चे सो जाते थे जाके। तो झुंझुनू वॉज इटसेल्फ अपने आप में अमेजिंग, और सबसे अच्छी बात है कि इन बच्चों में इतना जोश था साहब कि झुंझुनू में इन्होंने मतलब उस सैनिक स्कूल को एक ओएसएस में कन्वर्ट कर दिया। इट इज अ ग्रीन कैंपस नाउ, इतना सुंदर है कि अगर आप इंटरनेट से भी देखेंगे तो आपको फोटोग्राफ देख के आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
1: तो जबकि उसमें बताया जाता है कि झुंझुनू अपने आप में बहुत ही गर्म एक रीजन होता है, बड़ा गर्म इलाका है, तो उसमें इस तरीके से इसको बना पाना, तो ये मतलब आपकी अपनी कोशिश रही, इसमें कितने लोगों ने साथ दिया, और जो बच्चे आपने जैसे कहा कि वो तो जाहिर है वो तो सीख रहे हैं आपके साथ, तो क्या वो भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर रहे?
0: बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों तो बच्चे तो स्कूल का एक अहम हिस्सा बन गए थे, हम जो भी कर रहे थे बच्चों को साथ में लेके कर रहे थे। देखिए साहब,
1: तो एक बड़ी टीम हो गई,
0: एक बड़ी टीम हो गई। द एंटायर ऑब्जेक्टिव वाज वेरी सेम कि ये अच्छे इंसान बने पहले, ये अच्छे सोल्जर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर अपने आप बनेंगे बाद में।
1: बिल्कुल,
0: टू इनकलकेट अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, ना वो सेंस सिखाना, वो इंग्रेन करना उनके अंदर में, दैट वॉज द बिगर एंड द लार्जर एम। एक्चुअली मैं बड़ा खुश हूँ कि इसमें से कई बच्चे अभी आर्मी में ऑफिसर बन चुके हैं, कई लड़कियां बन चुकी हैं जो वहां पे गई थी। तो आई एम श्योर ये एक मूवमेंट है जो देश में बहुत दूरगामी परिणाम देगा आगे आगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो जो बीज आपने वो बोया वो अब आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन के पेड़ बन रहा है, और वो फल फूल रहा है और सब तरफ फैल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: तो ये जो सिचुएशन आपने वहां की बताई, उसमें उन बच्चों को जैसे आपने कहा कि उनके घरों से, उनके माओ की गोद से निकाल करके लाना, उनको डिसिप्लिन सिखाना, पूरा लाइफ स्टाइल बदलना, उनको एक एक चीज सिखाना, वो मैनेजमेंट जो था, वो आपकी जो टीम थी उसमें कितने लोग थे और किस तरीके से आपने उसको मतलब प्लान किया, मैनेज किया, ऑर्गेनाइज किया?
0: शुरुआती दौर में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ये दो लोग होते हैं, उसके साथ साथ में 5 टीचर्स लिए आते हैं, 5 टीचर्स और करीब 6-7 का और स्टाफ। तो पूरे एक बड़े से कॉलेज को मैंने 25 एकड़ के आसपास के कैंपस को या 50 एकड़ के कैंपस को शुरुआत में मैनेज करने के लिए ले देके आपके पास में गिनती की यही 12-15 लोग होते हैं
1: बस,
0: यही आपकी बैकबोन होते हैं, यही आपके लेफ्ट राइट आपके आँख कान नाक सब कुछ होते हैं। तो इन्हीं से ही सारा काम करना होता है। तो सबसे बिगेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मोटिवेशन, कि सबको मोटिवेट करके एक लार्जर एम से अलाइन करना कि हम सबका उद्देश्य देखिए साहब ये है, ये पहला बैच है, इसकी नींव अगर मजबूती रखी जा गई तो कम से कम ये आगे चल के सस्टेन करेगा आगे जाके।
1: बिल्कुल, और ये तो मतलब हमेशा के लिए
0: हमेशा
1: एक बहुत बड़ी मिसाल भी बन गया। तो क्या कभी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, कभी ऐसी मुश्किलें आई जहां आ गया कि अब शायद ये हम पूरी तरीके से कामयाब शायद ना हो पाए?
0: नहीं साहब, चैलेंजेस बहुत आए, बट दिमाग में ये चीज बहुत जरूरी, बहुत क्लियर थी कि ये एक टफ फेज है, बट हाँ इससे निकल के आने के बाद में ये स्कूल जो तैयार हुआ है ये आगे से, देखिए हम सब शायद फेड हो जाएंगे कितने कितने टाइम पे आके, बट ये संस्थान रहेगा, इसकी एथॉस रहेगी, इसकी कार्यशैली रहेगी, और जो जो चीजें अभी करी गई ये शायद चलती रहेंगी आगे तक
1: हमेशा के लिए, हमेशा बन गया और वो हमेशा ही वहां से एक नए बच्चे निकल करके आते
0: जी,
1: रहेंगे
0: जी, जी,
1: तो ये
0: जी,
1: बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ा अचीवमेंट आपके पूरे करियर का, अगर मैं गलत नहीं कह
0: रहा। मैं बिल्कुल मानता हूँ आपकी बात, ये सबसे सैटिस्फाइंग फेज था हमारे करियर का, और क्योंकि एक ऐसी चीज थी कि आप उन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं जिनको आपको जिनमें आपका भविष्य दिख रहा है आपका उनका, तो ये अपने आप में बहुत ही सुखद और बहुत ही अमेजिंग फेज था करियर का।
1: सर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो आपको अनथक कड़ी मेहनत, एग्जेम्पलरी फोरसाइट, जबरदस्त फुल प्रूफ प्लानिंग, लीडरशिप और अपने कर्तव्य से बढ़कर दिए गए अटूट समर्पण के लिए, यही सब काम उसमें शामिल थे जो राष्ट्रपति द्वारा आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। तो कैसा महसूस हुआ आपको उस वक्त, वो क्षण, वो मोमेंट्स, और यही वो आपका काम था जिसकी बदले आपको VSM से सम्मानित किया गया
0: जी,
1: तो वो जो मोमेंट था।
0: देखिए साहब, कभी भी किसी रिकग्निशन के लिए काम नहीं किया, काम तो अपनी सेवा भाव से अपने दम से किया पूरा का पूरा
1: जी।
0: हाँ, बस ये था कि तीन स्कूल स्टैब्लिश करना अपने आप में एक अचीवमेंट था, जिसको हमने अचीवमेंट की तरह तो नहीं लिया, बट हाँ जिन लोगों ने, जो मेरे ऊपर से उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उसको अचीवमेंट माना और उसके बाद में राष्ट्रपति जी से ये सम्मान मिला, तो अपने आप में ये बहुत ही सुखद अनुभव था। इट वाज एक्चुअली अ ट्रेमेंडस अचीवमेंट।
1: सर ये आपके लिए अचीवमेंट था, आपके लिए एक बहुत बड़ा एक मेडल था और ऑनर भी था। आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके जो मिलने वाले थे, उनका क्या रिएक्शन था? ये एक अलग सी चीज है
0: जी,
1: बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो तो वो बताइए हमें।
0: मुझे याद है जिस दिन ये अवार्ड डिक्लेयर करा गया था, हमारी एक कोर्समेट ने मुझे कॉल करके बताया कि भाई तुम्हारा नाम अवार्ड की लिस्ट में है। तो अपने आप में बस सबसे सबसे सुखद अनुभव था वो वाला।

0: पर हाँ, ये फौज में बहुत चुनिंदा लोगों को ही इस तरह से अवार्ड
1: बिल्कुल
0: दिए आते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो
1: बिल्कुल
0: अपने आप में ये अवार्ड दिया जाना बहुत सुखद अनुभव था और बहुत प्रोत्साहन भी मिला इस चीज़ से कि आगे भी अच्छे करते रहना है।
1: बिल्कुल
0: जी
1: सर, एक चीज़ यहाँ पर हमें बताइएगा कि जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं और सैनिक स्कूल का जो प्रोसीजर होता है कि कैसे वो आए, एडमिशन लें, फिर आगे बढ़ने के लिए उनके ऊपर क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा हमारे लिसनर्स को।
0: जी देखिए, सैनिक स्कूल भारत में करीब 31 सैनिक स्कूल हैं एज ऑफ नाउ। इन सभी स्कूलों में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होता है,
1: ठीक है,
0: जिसको कि एनटीए कंडक्ट कराता है। तो जो भी बच्चे क्लास 5 पास कर चुके हैं या पांचवें में हैं,
1: जी
0: दे कैन अपियर इन द एग्जामिनेशन।
1: ओके,
0: और इस एग्जाम को जब कंडक्ट कराया जाता है उसमें अपनी अपनी चॉइस दी जाती है कि आप भाई आप किस स्टेट के नेटिव हैं,
1: अच्छा
0: किस राज्य के आप हैं नेटिव, और उसके बाद में कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस जिस राज्य में आप अप्लाई कर, अगर आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य में अप्लाई करें तो 70% सीट्स उस राज्य से भरी आती हैं और 30% सीट्स अलग अलग राज्यों से भी भरी आती हैं, जिनका अलग अलग कुछ सीट नॉमिनेट होती हैं। तो ये रूल्स समय समय पर चेंज भी होते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये चल रहा है। एंड इन स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ही बच्चे को वहाँ पर दाखिला होता है। पर यह बात निश्चित है कि सैनिक स्कूल्स का जो उसमें जो ग्रूमिंग होती है, जो एक बच्चे के अंदर में एक एक आदर्श डाले आते हैं, जो उसके अंदर में एक डिसिप्लिन की भावना डाली जाती है, ये जीवन भर काम आती है। तो भले ही वो फौज में जाए या ना जाए, उद्देश्य तो जाना ही है, पर अगर वो चूज करता है कि नहीं भी जाना है, हर बच्चे के अंदर में अलग अलग महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, चॉइस हो सकती हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि उस बच्चे को जीवन भर कम से कम एक सही दिशा सही तरीके से डिसिप्लिन लाइफ जीने का एक रास्ता जरूर मिल
1: जाए। बुनियादी तौर पर वो जो रूट्स हैं उसके वो मजबूत हो जाते
0: बिल्कुल।
1: हैं, और वो जैसे आपने कहा कि वो डिसिप्लिन और एक लाइफस्टाइल जो है पूरा वो
0: बिल्कुल
1: बहुत ही ऑर्गेनाइज हो जाता
0: yes,
1: है।
0: yes,
1: तो सर
0: yes.
1: इसके अलावा भी कोई क्राइटेरिया होता है या कोई वेबसाइट है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या कोई और प्रोसीजर है?
0: यस yes, यस yes. अगर गूगल करेंगे सैनिक स्कूल एडमिशंस की वेबसाइट भी अलग है, सैनिक स्कूल सोसाइटी की वेबसाइट भी अलग है, और इन सभी स्कूलों के अलग अलग स्वयं की वेबसाइट भी है जिसपे की जो लोग एडमिशन चाहते हैं वो जाके जानकारी भी ले सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, एवरीबडी हैज द डेटा विद हिम, तो सब लोग उस पे जाके देख सकते हैं, जिसको जहां पे चूज करना है दे हैव ऑप्शन।
1: ओके, तो ये इन वेबसाइट से और सैनिक स्कूल सर्च करेंगे गूगल पर तो सारा प्रोसीजर सामने
0: जी,
1: आ जाएगा
0: जी,
1: उसके थ्रू। लेकिन आपने कहा कि जो पांचवी पास आउट कर रहे होते हैं बच्चे वो
0: या जो पास आउट
1: हो चुके हैं
0: हाँ, 12 साल की लिमिट होती है,
1: 12 साल
0: तो 10 से 12 के बीच में ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं।
1: ओके, हमारे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। आगे भी हम उनसे बातचीत रखेंगे जारी और कुछ और भी उनके पहलू पर जिंदगी के और करियर के डालेंगे रोशनी। आप बने रहे हमारे साथ रेनबो पर। आप हमें व्हाट्सएप करके सवाल कर सकते हैं 9868107070 पर।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हमारा स्पेशल शो संदेश टू सोल्जर्स। और हमारे स्पेशल गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM। सर, हम बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आपने 3 नए सैनिक स्कूल को एस्टैब्लिश किया, कितना चैलेंजिंग था और कितने ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, और वही आपकी मेहनत और वही चैलेंजेस जो आपने एक्सेप्ट किए और उनको फुलफिल किया, जिसकी वजह से आपको विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्वारा। तो हमने आपकी फीलिंग्स ही पूछी और हम फीलिंग्स अब देखना चाहेंगे। हमारे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पर, हम देखते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। ये है मैसेज, जय हिंद सर जी, रजनीकांत हैं ये रघुनाथ पाटिल वार्ड 1 से। और इसके अलावा मैसेज है, हेलो सर, माय हार्टेस्ट सैल्यूट टू ऑनरेबल गेस्ट टुडे एंड जय हिंद टू ऑल आवर इंडियन आर्मी फॉर देयर सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द कंट्री। आई बो माय हैट टू देम माय सेल्फ अंजलि लोध फ्रॉम काकरोला द्वारका सेक्टर 15 दिल्ली। वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्लीज शेयर माय मैसेज टू रेस्पेक्टेड सर।
1: थैंक यू सो मच।
0: तो आपका मैसेज जो है अंजलि, हमारे जो गेस्ट हैं आज के कर्नल वरुण वाजपेयी, उन्होंने सुन लिया है। और एक मैसेज और है, ये शरद का मैसेज है, वो गुड इवनिंग सर, आपको सल्यूट कर रहे हैं शरद।
1: धन्यवाद।
0: तो ये तो ही बात जो हमारे मैसेजेस आए हैं, आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर, और कॉल कर सकते हैं दिल्ली के कोड के साथ 01123421085। सर, हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में। हम जानना चाहेंगे कि आपसे कि पीजीआई लखनऊ का जो आपका एक एक्सपीरियंस है, तो पीजीआई क्या है, क्या होता है और आप कैसे पहुंचे, क्योंकि पीजीआई लखनऊ के रजिस्ट्रार के तौर पर आप मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में नए बदलाव भी ला रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: जी जी, वाइल्ड बींग इन सर्विस मुझे डेपुटेशन पे पीजीआई भेजा गया। मतलब पीजीआई में डेपुटेशन की ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी निकलती हैं, जिनमें इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को का चयन होता है। तो डेपुटेशन के लिए 3 साल के लिए मुझे पीजीआई गया था मैं। तो वहाँ पे एज अ रजिस्ट्रार माय रोल वाज प्राइमरली टू द मैनेजमेंट ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि जो हमारे DMMCH MDMS के जो पाठ्यक्रम हैं, प्लस जो हमारे यहाँ 2 कॉलेजेस हैं, कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनका प्रबंधन और प्लस डे टू डे एकेडमिक मैनेजमेंट पूरे इंस्टीट्यूट का, वो एक रजिस्ट्रार के माध्यम से किया जाता है।
0: तो ये बहुत ही एक अहम भी और बहुत ही मतलब टफ होता है, क्योंकि अब बिल्कुल ही एक एकेडमिक्स में आकर के
1: एब्सोल्युटली कमिंग फ्रॉम अ इन्फेंट्री बैकग्राउंड एंड कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड व्हिच वाज हार्डकोर ऑपरेशनल बैकग्राउंड,

0: करोड़ पॉपुलेशन का एक सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के लिए यहीं पे एक अवसर मिलता है।
1: अच्छा,
0: तो ये अपने आप में बहुत ही ट्रिमेंडस अचीवमेंट रहा, ये रहा कि भाई लोगों को हेल्प भी करी करी काफी
1: जी,
0: करी
1: जी।
0: और नए एकेडमिक कोर्सेज को, नर्सिंग कॉलेज को रीइंस्टेट करने में, उसकी जो ग्लोरी बनती है उसको वहां पे लाने में, तो उसमें काफी योगदान किया गया
1: जी। तो सर, अब जैसे आजकल के बच्चे हैं वो भी, उसके लिए क्या आप कह सकते हैं कि करियर के लिए या अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए, तो पीजीआई उसमें किस तरीके से अपना योगदान देता है, रोल प्ले करता है, तो किस किस तरह से इसका फायदा उठाया जा सकता है?
0: देखिए, पीजीआई लखनऊ में है और एक चंडीगढ़ में भी है। जो लखनऊ वाला पीजीआई, दैट इज पार्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एंड इसमें यहाँ पे एमबीबीएस कोर्सेज नहीं होते हैं, बट एमडी और एमएस कोर्सेज होते हैं और डीएम और एमसीएच कोर्सेज होते हैं, जो कि प्लस पीएचडी भी हैं, जो कि सुपर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं। तो इनके लिए आपको ग्रेजुएट होने के बाद में नीट पीजी और नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में अपियर करना पड़ता है, और जो लोग एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं, जहां पे इनके अच्छे नंबर आते हैं, तो रैंक के माध्यम से उनको रिस्पेक्टिवली कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। तो ये चूज कर सकते हैं, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, ऑटोनोमस है, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के डिपार्टमेंट्स पुराने हैं, यहाँ की लेगेसी बहुत रिमार्केबल है, और जिस तरीके से एक संस्थान चल रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे एक शिक्षा की पद्धति बनाई गई है, वो बहुत यूनिक और रिमार्केबल है।
1: सर, जैसे हमने बात करी थी कि इसके जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें और उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बदलाव लाए जा रहे हैं, तो वो किस तरीके के हैं और उनसे कितना फायदा हो रहा है अभी?
0: बहुत सारे बदलाव हैं। देखिए, आप प्राइमरी केयर होता है, फिर टर्शरी केयर, फिर ना प्राइमरी अच्छा। होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी केयर होता है, उसके बाद क्वार्टनरी केयर भी होता है। तो अब संस्थान एक नए लेवल पर जा रहा है, कुछ स्तर पर जा रहा है, जहाँ पे टर्शरी केयर के बाद में अब हम क्वार्टनरी केयर की बातें करने जा रहे हैं। जहाँ
1: अगर हम एक लेमैन के हिसाब से समझेंगे, भाषा के हिसाब से, तो उसको कैसे हम इसको समझेंगे कि ये कौन कौन से, आप जो बता रहे हैं आप
0: संस्थान में, जैसे कि टर्शरी केयर होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सुपर स्पेशलाइज्ड केयर होता है।
1: अच्छा।
0: कि जैसे कि आपके ट्रांसप्लांट्स हो गए, जैसे कि आपके इम्पोर्टेंट सर्जरीज हो गई, ट्रीटमेंट्स हो गए, जेनेटिक ट्रीटमेंट्स हो गए, तो इनका भी एक हायर लेवल होता है, उसको हम बोलते हैं क्वार्टनरी केयर, जिसमें मल्टीपल स्पेशलिटीज को अमैलगमेट करके एक जगह पे किसी भी पेशेंट के सारे रोगों का उपचार एक साथ करने की पद्धति निकाली जाती है। तो इन चीजों को अभी हम लोग लेके आ रहे हैं, वहां पे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, एंड वी विल टेक इट फर्दर इन अ बिग वे नाउ। सो पीजीआई इज गोइंग टू बी ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल ऑल टुगेदर।
1: ओके,
0: हाँ, तो प्लस यहाँ पे ये यह है कि भाई जो बच्चे यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको जो एक्सपोजर मिलेगा यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेशेंट को देखने में, डिफरेंट प्रॉब्लम को क्योर करने में ना, वो बहुत रिमार्केबल होगा।
1: सर, लेकिन एक चीज यहाँ पर हम ये भी महसूस करते हैं आपसे बातचीत करते हुए कि जो चैलेंजेस आपको सैनिक स्कूल एस्टैब्लिश करने में आए होंगे, ये तो मुझे और भी टफ महसूस हो रहा है कि इसको अपग्रेड करना, इतने हाईली सेंसिटिव जो ट्रीटमेंट आपने बताए उनको और बेहतर।
0: देखिए सर, दोनों के चैलेंजेस डिफरेंट थे। सैनिक स्कूल में आई वाज द लीडर and I had all the people who under me and I could use them at my own disposal. यहाँ पे एक टीम है जो कि अलग अलग competencies, capabilities और अलग अलग environment से आती है, तो यहाँ पे एक टीम भावना को लेकर चलना, उनको सबको समन्वय के साथ लेकर चलना आगे, वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बड़ा इंस्टीट्यूट है, ज्यादा लोग भी हैं, तो दोनों के अलग अलग चैलेंजेस हैं। यहाँ पे हम लखनऊ में बैठे हैं, वहाँ पे आप आइजोल से 85 किलोमीटर डाउन साउथ थे जंगल में, एक तरीके से जहाँ पे बहुत मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, वहाँ पे जहाँ फोन तक नहीं मिलता था उस टाइम पे, तो इन सब में अलग अलग चैलेंजेस हैं, दोनों के अलग अलग वो हैं, प्रारूप हैं, बट द फैक्ट इज कि यस, बोथ आर इक्वली चैलेंजिंग एंड दैट इज व्हाट कीप्स मी गोइंग।
1: जी, तो लेकिन कभी आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही एग्जर्शन आपको महसूस हो, आपको लगा कि बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे भी ब्रेक चाहिए, ऐसा कभी आपको लगा?
0: देखिए सर, ब्रेक सबको लेना भी चाहिए, टफ टाइम्स आते हैं, बट टफ टाइम्स में वही कहावत नहीं कि भाई टफ टाइम्स डोंट लास्ट ना, बट टफ पीपल डू, तो वही टफ पीपल डू लास्ट, तो वही वाली एक सच्चाई है कि जो इंसान मजबूत है, जो इंसान सहनशील है, जिसके अंदर में अपने आप को दोबारा एनर्जाइज करने का दम है, तो वो लगा रहेगा, रास्ता निकाल लेगा अपने आप।
1: तो बिल्कुल, वो जोश और जज्बा बरकरार रहना चाहिए, तो आप कभी भी थमते या रुकते नहीं है, आप एक छोटा सा ब्रेक लेकर फिर आगे बढ़ते हैं।
0: फिर आगे बढ़ते हैं
1: सर, इसी में पीजीआई के बारे में बात करें कि आपने पीजीआई के नर्सिंग कॉलेज को रीस्ट्रक्चर, इसका पुनर्गठन भी किया, तो वो कैसे किया गया, क्योंकि ये भी एक अलग एक पूरा एक अपने आप में काम था, कार्य था।
0: जी, देखिए नर्सिंग कॉलेज एक नर्सिंग एक बैकबोन है हमारी क्लिनिकल सर्विसेज की।
1: okay.
0: अच्छे नर्सेज ही अच्छे केयर को दे पाएंगे। डॉक्टर्स ने इलाज करना है, सर्जरी करनी है, बट उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है या किसी भी मरीज की देखभाल है, केयर है, वो तो नर्स के जिम्मे आती है। तो अच्छा नर्सिंग का करिकुलम बनाना, अच्छे नर्सेज को ट्रेन करना, तो हम लोगों ने लखनऊ में इस कॉलेज को पूरा रिस्ट्रक्चर किया। कॉलेज चल रहा था पहले से, और उसके अंदर में बहुत ही जो ब्रॉड लेवल के बदलाव हम लोग लेके आए, हमने कोर्स को, करिकुलम को रिस्ट्रक्चर किया, टीचर्स को लेके आए अच्छे, जो हमारा ट्रेनिंग को हमने और प्रोएक्टिव बनाया, अकाउंटेबल बनाया।

0: और उनके मैट्रिक्स को हमने किया तो यूपी गवर्नमेंट ने अपने अपने अपने जो मेजर्स को लगाया वहां पे, तो जिन मेजर्स पे एक समय पे हम 38-35 नंबर्स पे आ रहे थे, वहां पे वी रीच टू द लेवल ऑफ 92 एंड पीजीआई वाज नॉमिनेटेड एज अ मेंटर इंस्टीट्यूट, जिसमें हम पूरे स्टेट की या जहां जहां प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस भी हैं इन सबको मेंटर करने के लिए हमको दिया गया कि आप उनको मेंटर भी करिए, बताइए कैसे आप कैसे अपने स्टैंडर्ड को ऊपर लेकर जाया जाता है। तो ये अपने आप में
1: बहुत बड़ा अपने आप में अचीवमेंट जी जी, और जाहिर है बहुत टफ भी रहा होगा।
0: हाँ,
1: इसमें इसमें फिर किस तरीके का आपको,
0: इसमें सबका योगदान है, कॉलेज के प्रिंसिपल का, कॉलेज के फैकल्टी का, बाकी लोग जो इन्वॉल्व थे, बट हाँ सबको लेके चलना हो, ये बोलना कि नहीं साहब हमको इस स्टैंडर्ड को लेके ऊपर बढ़ाना है और जिस चीज के लिए भी ये जाना जाता है वो स्टैंडर्ड को हमको अचीव करना है, तो दैट इज हाउ वी कुड डू इट एंड इट केम टू अ लेवल।
1: बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज यहाँ भी है कि एक तो होता है कि आप एक बुनियादी तौर से मतलब बिल्कुल रूट से एक नई चीज खड़ी कर रहे हैं और एक है कि रीस्ट्रक्चर उसको करना
0: जी,
1: तो वो मुझे लगता है कि ज्यादा टफ रहा होगा।
0: रीस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहला जानना ये जरूरी होता है कि किन चीजों से आप लैक कर रहे हैं। जब आप ये जान जाते हैं कि भैया ये चीज हमको पुल डाउन कर रही है, देन उनको स्ट्रीमलाइन करना और उनके अलाइड चीजों को साथ में इकट्ठा करना वो एक अलग टास्क होता है। तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि आप जो लोग कॉम्पिटेंट हैं
1: जी,
0: जो इस काम को कर सकते हैं, कैसे आप उनको मोटिवेट करें, कैसे आप उनको एनर्जाइज करें, कैसे आप उनको कुछ ऐसे पर्क्स दें जो उनको थोड़ा अच्छा महसूस कराएं
1: जी, जी,
0: और
1: जी,
0: कैसे उनको एक सिस्टम में लेके साथ चलने के लिए प्रेरित करते रहें, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
1: ये जितनी भी चीजें रही हैं यहाँ पर, वो जो आपका जो आर्मी का बैकग्राउंड था, वो जो ट्रेनिंग थी, वो सब जो सीख कर आप आए, तो वही यहाँ पर ज्यादा असरदार साबित हुई, उसी ने ही सबसे बड़ा इसमें आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आप ये सब कुछ बहुत अच्छे से कर पाए, ऑर्गेनाइज मैनर में कर पाए।
0: बिल्कुल, मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे आप हर एक व्यक्ति को साथ लेकर चलें, कैसे आप उसको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं, क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, हर इंसान की कॉम्पिटेंसी में, हर इंसान की कैपेबिलिटी में फर्क होता है, पर इन कैपेबिलिटीज को, कॉम्पिटेंसी को कैसे हार्नेस करा जाए, कैसे उसको सिस्टम में ज्यादा यूज किया जाए, कैसे उनको लेकर चला जाए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एंड डेफिनेटली मिलिट्री की ट्रेनिंग हैज बीन द बैकबोन फॉर द एंटायर एफर्ट एक्चुअली।
1: यानी कि वो जैसे हम अक्सर हम बात करते हैं जब भी हमारे पास आर्मी ऑफिसर सोल्जर्स आते हैं, तो वो यही बताते हैं कि आर्मी जो है वो हम उसका एक पार्ट जब बन जाते हैं तो वो एक अलग जिंदगी है, वो एक जिंदगी गुजारने का तरीका भी है,
0: जीवन शैली है
1: वो एक लाइफ और बहुत ही स्पेशल है,
0: समझता हूँ।
1: तो वो जैसे अब कहा जाता है कि एक थोड़ा बहुत वक्त जो है हर एक सिटीजन के लिए कंपलसरी करना चाहिए कि थोड़ा बहुत समय वो उस ट्रेनिंग को दें ताकि वो उस डिसिप्लिन को भी समझें और सीखें और उनके मन में जो है वो देशभक्ति की भावना को लेकर के एक जज्बा पैदा हो
0: जी।
1: तो इस चीज में किस तरीके का हम कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी पॉलिसी, अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं।
0: देखिए साहब, भारत बहुत बड़ा देश है और हमारी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग इनफ, सो कंपलसरी जो कंस्क्रिप्शन होता है कि भाई सबको सैन्य में सेवा करनी करनी है
1: जी,
0: वो शायद यहाँ संभव ना हो पाए, बट हाँ ये जरूर है कि एनसीसी हो गया, स्काउट्स हो गया, इन सब की ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे पास एक युवा पीढ़ी मौजूद है जो कि फौज ज्वाइन करने के लिए तैयार है। आज भी देखिए भर्तियों में कितना भीड़ लगती है, आज भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यूज में देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स, 10-12 लाख लोगों में से कुछ चुने हुए 400 लोग, 350-300 लोग अकेडमी पहुंच पाते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट, देयर लॉट ऑफ लाइक एंथुसियाज्म इन द यंगस्टर्स, जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई आर्मी में वो अपनी सर्विस दे पाए, नेवी में जा पाए, एयरफोर्स में जा पाए। तो डेमोग्राफिकली इंडिया इज इनरिच्ड, वी हैव अ लॉट ऑफ यंग पीपल। हाँ ये जरूर है कि गवर्नमेंट को अच्छी स्कीम्स लेके आनी चाहिए जिससे कि वो लोगों को मोटिवेट करें, जो जिससे कि एटलीस्ट एक सैनिक होने पे जो प्राइड है ना वो बरकरार रहे। तो वो एक बहुत बहुत वो दशवार है, एग्जैक्टली।
1: सर एक चीज यहाँ भी बताएगा कि जैसे जो शुरुआत है कि जब आप चाहते हैं कि आप इस ट्रेनिंग का हिसाब बने, जहाँ आपने बताया कि एनसीसी से शुरुआत हो सकती है और भी कई सारे ऐसे, तो कब से कर सकते हैं, क्या उसके लिए मिनिमम क्राइटेरियाज हैं, एज फैक्टर है, एजुकेशन है, वो भी बताइएगा।
0: आई ऑल्सो गॉट अ चांस टू स्टे इन एनसीसी बटालियन ऑल्सो। तो एनसीसी में क्या होता है, दो विंग होते हैं, जूनियर डिवीजन होता है, सीनियर डिवीजन होता है। तो जूनियर डिवीजन में तो ए सर्टिफिकेट मिलता है, बट हाँ सीनियर डिवीजन की शुरुआत होती है क्लास ऑलमोस्ट 9-10 से।
1: अच्छा,
0: तो 9-10 से वो बच्चा जा सकता है सीनियर डिवीजन में और वो अपना एनसीसी का 11th 12th आते जाते अपना बी सर्टिफिकेट पास कर लेता है और 12th के बाद में वो ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना सी सर्टिफिकेट कर सकता है। बट सी सर्टिफिकेट करने का एडवांटेज ये है कि उससे उस पर्टिकुलर कैडेट को एग्जाम में अपीयर करने से छूट मिल जाती है।
1: अच्छा,
0: तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में एक एनसीसी का एक कोर्स चलता है जो कि विच इज इक्विवेलेंट टू अ नॉर्मल कोर्स, जिसमें इसके बाद में यू गेट अ कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट फ्रॉम द अकेडमी। तो एग्जाम आपको एसएससी एग्जाम पास करने की वजह से आपको एग्जाम में अपीयर करने की

0: छूट मिल जाती है. यू हैव टू अपियर स्ट्रेट फॉर द एसएसबी. एसएसबी आपने पास कर लिया तो आप यू कैन गो एंड ज्वाइन द एकेडमी विद अ रेगुलर कोर्स. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एडवांटेज है. तो मुझे लगता है कि एनसीसी को ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस में कंपलसरी करना चाहिए और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके ऊपर में और ध्यान देना चाहिए. बिकॉज ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी युवा पीढ़ी को ना एक लार्जर नेशनल एथॉस में इंक्लूड कर सकते हैं.
1: कम से कम उनके अंदर वो चीज, वो
0: राष्ट्रीय भावना और वो राष्ट्रीय स्पिरिट को वी कैन अपहोल्ड. दैट स्पिरिट
1: अपहोल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, वो चीज उनमें बरकरार रहनी चाहिए और उसके अंदर वो जोर से जज्बा और देश देश से जुड़ने का भी एक ना उसके पास एक माध्यम होगा. हाँ भाई, क्यों वो अपने देश से मोहब्बत करता है, उस पर जानिशार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है. सर हम आगे बढ़ेंगे, आपसे बात करेंगे और हम पीजीआई के अंदर जैसे आपसे हमने बात करी, इतनी लंबी बात करी हमने, और उस पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसमें टेक्निकली की भी अब एडवांसमेंट हो रहा है, एआई का भी इसमें शामिल किया जा रहा है जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है. तो जाहिर है एआई हर जगह पर है, तो क्या उसमें उसकी भी कहीं पर जो है शामिल किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है उसको?
0: जी जी बिल्कुल.
1: तो यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे संदेश टू सोल्जर्स में और हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना बताएं ताकि हम यहाँ पर आपके लिए प्ले कर सकें.
0: आप बॉर्डर का गाना चलाइए, संदेश से आते हैं.
1: तो आज के हमारे गेस्ट हैं संदेश टू सोल्जर्स के कर्नल वरुण वाजपेयी VSM. आप सुन रहे हैं 1.6 देश के नंबर 1 रेडियो आकाशवाणी रेनबो संदेश सोल्जर्स शाहिद के साथ, और ये हमारे आज के गेस्ट कर्नल वरुण वाजपेयी की फिल्म का ट्रैक. आप भी एंजॉय करें और आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं हमारे आज के गेस्ट से. 9868107070 नंबर है हमारा.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। हमारे आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान हैं कर्नल वरुण वाजपेयी VSM, और हम बात कर रहे हैं वरुण से। हमने बात करी 3 नए सैनिक स्कूल जो उन्होंने एस्टैब्लिश किए, उसके अलावा उनके आर्मी के बैकग्राउंड के बारे में बात की, और हमने बात करी PGI लखनऊ के बारे में। सर, हम आगे बढ़ेंगे और हम जानना चाहेंगे कि PGI लखनऊ की आपने बात करी, इतना प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, तो अब AI का तो यूज हर जगह है, हर चीज में है
1: जी।
0: तो हमारी जो मेडिकल फील्ड है और जो ट्रेनिंग है उसमें भी अब AI का बहुत यूज हो रहा है, तो PGI किस तरीके से AI के बारे में सोच रहा है या यूज कर रहा है?
1: देखिए, आज का दौर ऐसा है कि आप AI से अपने आप को अलग नहीं कर सकते
0: जी।
1: AI हम सबके जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे आप मोबाइल यूज करें, चाहे आप किसी चीज को सर्च करें, कुछ भी करें
0: जी।
1: AI हैज बिकम अ प्रिंसिपल वे टू लिव योर लाइफ नाउ।
0: तो गलत है कि मतलब किस तरह से आप इसको देखते
1: जी
0: हैं?
1: नहीं, मैं इसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ। देखिए सर, टेक्नोलॉजी कोई भी चीज जब नहीं आती है तो इनेबलर होती है, कुछ चीज को इनेबल भी करती है, उसके अपने पिटफॉल्स भी होते हैं
0: जी।
1: उसको दिक्कत नहीं आती जो उसके लिए तैयारी पहले से कर लेता है। अब जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां पे भी AI का बहुत बड़ा रोल होने वाला है डायग्नोस्टिक में।
0: अच्छा,
1: बहुत बड़ा रोल होने वाला है चीजों को समझने में। अब जैसे आप, छोटी सी बात है, मैं एक उदाहरण दे सकता हूं। मैं डॉक्टर

0: नहीं हूँ, बट एटलीस्ट मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि क्लिनिकल साइंसेज में, डायग्नोस्टिक में, एआई विल बी हैविंग अ मेजर रोल नाउ. कि आपने एमआरआई करा, एमआरआई को पढ़ने के लिए आपको क्लिनिशियन चाहिए, वो हमेशा चाहिए होगा. देयर विल ऑलवेज बी अ मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, दैट यू कैन नॉट नेगेट दैट, उसको आप नहीं दूर कर सकते. बट हाँ, 10 चीजों को कंपेयर करके, 10 एआई के जो एआई का जो डेटाबेस है उससे, उस इमेज को कंपेयर करके जो एक इन्फ्रेंस निकल सकता है
1: जी,
0: और उस डायग्नोसिस के बाद में जो बेटर इलाज निकल सकता है, इन सब चीजों में एआई का बहुत बड़ा रोल होने वाला है. तो पीजीआई में बहुत बड़े स्तर पे अभी एआई को हम लेके आएंगे अपने क्लिनिकल टूल्स के अंदर में, सर्जिकल टूल्स के अंदर में, और टेक्नोलॉजी को हम ऐसे एम्बेड करें, कैसे उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, उस पर काफी विचार विमर्श चल रहा है, काफी काम चल रहा है. तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे एआई से आप दूर तो नहीं जा पाएंगे.
1: एआई विल, अक्सर लोग बताते हैं सर, अब जो एक मेडिकल एग्जामिनर है वो किसी रिपोर्ट को देखता है, अगर उसको वो एनालाइज करता है, तो वो हो सकता है कि वो किसी हद तक परफेक्टली शायद उसको डायग्नोस ना कर पाए उस डिजीज को. लेकिन ये बताया गया है कि एआई बहुत ही कम समय में एकदम परफेक्ट उसको एनालाइज कर लेती है, तो ये किसी हद तक,
0: मैंने भी कुछ कुछ रिपोर्ट ऐसी देखी है जहाँ पे ये देखा गया है कि एआई का जो असेसमेंट रहा है वो क्लिनिशियन के असेसमेंट के बिल्कुल पास रहा है, कभी कभी उससे बेटर भी हुआ है, और स्कोप ऑफ एरर काफी कम कर दिया है उसने. मैं ये बात तो हमेशा बोलूंगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ इंडिविजुअल और मैन और अ क्लिनिशियन बिहाइंड एनी टेक्नोलॉजी. तो ह्यूमन इंटरफेस को तो आप निगेट नहीं कर सकते, बट ये जरूर है कि एआई के माध्यम से, एआई के आने से, जो हमारा परफेक्शन है हम उसके और पास पहुंच सकते हैं. अपनी हम ट्रीटमेंट की पद्धतियों को, अपने इलाज की शैलियों को हम और रिफाइन कर सकते हैं, एंड वी कैन रियली रीच आउट टू द रियल कॉज ऑफ द इलनेस इन अ शार्पर एंड अ फास्टर वे. दिस कैन डेफिनेटली बी अ बिग रेवोल्यूशन नाउ.
1: सर, एआई पर हमने बात की, और एआई तो बिल्कुल जैसा आपने कहा कि जिंदगी का हिस्सा बन ही चुका है हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में. हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर भी, जो फौज पर उसका क्या असर होता है, जो नए बच्चे जाते हैं उनका भी बात करेंगे. लेकिन पहले मैं मैसेज ले लूं जो मैसेज आए हुए हैं. ये मैसेज आया है, जय हिंद सर, सेवा मेडल के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद. मैं शबनम बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से, और इनका सवाल भी है सर
0: जी,
1: इनका सवाल ये है कि किस आधार पर सैनिक स्कूल में दाखिला मिलता है, कृपया बताएं. हालांकि इस पर बात हमने की
0: जी जी जी,
1: तो एक बार और प्लीज अगर बता.
0: देखिए, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होता है
1: जी.
0: क्लास फिफ्थ पास बच्चे जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
1: जी.
0: 10 से 12 साल का एज लिमिट होता है. क्लास छठे और क्लास नवे में एडमिशन किया जाता है. एग्जाम एनटीए कराता है, और सैनिक स्कूल एडमिशन्स की एक वेबसाइट है, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा. तो इसमें सारा डेटा दिया हुआ है, और किस तरीके से क्या क्या करिकुलम होता है, कैसे एग्जाम में क्या चीज चेक करी जाती है, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस, वो सारा कोर्स करिकुलम, एग्जामिनेशन का पैटर्न, सब कुछ मिल जाएगा. और इवन कोर्स में एग्जामिनेशन को के अपीयर करने के लिए जो गाइड्स होती हैं, किताबें होती हैं, कोचिंग्स होती हैं, वो भी उपलब्ध हैं. तो आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप पे है आपके. यू जस्ट हैव टू गूगल सैनिक स्कूल एडमिशन, देन यू कैन गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन.
1: ओके
0: जी,
1: आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, और ऑनलाइन अप्लाई भी आप वहीं से कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
1: सर, एक मैसेज और है, गुड आफ्टरनून वाजपेयी सर एंड आरजे सर, जय हिंद टू यू एंड ऑल इंडियन आर्मी. आई सल्यूट ऑल ऑफ यू फॉर द डेडिकेशन एंड फेयरलेसली सर्विस टू आवर नेशन. आई गिव रिस्पेक्ट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट माई सेल्फ शंकर लोड फ्रॉम गोमो डिस्ट्रिक्ट धनबाद झारखंड. वंदे मातरम, भारत माता की जय.
0: भारत माता की जय.
1: तो ये इनका मैसेज था, और भी मैसेजेस अभी हम देखते हैं. लेकिन हम सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस पर हम बात करना चाह रहे हैं, कि क्या फौज पर भी सोशल मीडिया का असर होता है, क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर के कई कंट्रीज हैं ऐसी, जो हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, कि 16 साल तक के बच्चों के लिए उन्होंने उसको बैन किया हुआ है
0: जी.
1: तो
0: जी,
1: वो जाहिर है उसके अपने जो भी उसके हार्म्स हैं, जो भी उसके ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से. तो हमारे यहाँ भी जो बच्चे हैं उसी दौर से गुजर रहे हैं, जो बच्चे, यही बच्चे जो होते हैं फिर, ये जो इसी दौर से गुजर रहे होते हैं हम उसी जिंदगी में, लाइफस्टाइल में, तो वो सोशल मीडिया के भी काफी तक हमने देखा है कि वो थोड़ा सा उसके इन्फ्लुएंस हो जाता है. तो एनडीए में जब ये जाते हैं, तो सोशल मीडिया का उन पर किस तरीके का इम्पैक्ट होता है, क्या होता है, कैसे आप महसूस करते हैं, वो आपने अपने तौर पर जो चीजें देखी होंगी वो, तो उसको कैसे हैंडल भी करते हैं ये भी बताइएगा
0: जी. जी देखिए साहब, सोशल मीडिया इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड नाउ, दुधारी तलवार है, जिसके पॉजिटिव भी हैं, बिकॉज इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, लोगों को जानकारी मिल रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बट क्या ये कम्युनिकेशन रियल है, क्या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसका उत्तर ना है. ये तो एक ऑनलाइन मोड का कम्युनिकेशन है, जिसमें आप वर्चुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इस वर्चुअल एलिनेशन से होता क्या है कि हमारी कलेक्टिव साइकोलॉजी पर फर्क पड़ने लग जाता है. तो यही क्लास ट्वेल्थ पास लोग जो जवान जा रहे हैं फौज में, ये भी फोन पे ही, इनका फोन का एडिक्शन है, यही लड़के जब इंडिया जा रहे

0: हैं, तो ये भी उसी दौर से गुजर रहे हैं, सेम सोशल स्टाटा से, सेम सोशल सेगमेंट से इनको लिया जा रहा है. तो सोशल मीडिया का एडिक्शन अपने आप में उसके दुष्प्रभाव तो दिख रहे हैं
1: जी.
0: आजकल सबको पता है कि भाई एक टेबल पे जो लोग बैठे हैं पांच लोग, तो आपस में बातें नहीं कर रहे हैं खाना खाने के टाइम पे, या वो गपशप नहीं लगा रहे हैं, पर वो अपने फोन पे लगे हुए हैं और रील्स को उंगली उनकी हिल रही है.
1: वाला था सर, ये रील्स का जो एक तरह से वो हो गया है कि हैबिचुअल हो चुके हैं या एडिक्ट हो चुके हैं लोग, इसका कोई मतलब या असर भी, और दूसरी बात कि कैसे बचे इससे.
0: देखिए साहब, ये बहुत जरूरी है. तो जिन कंट्रीज ने देखिए अभी हाल में इस पे बैन लगाया है, दे ऑल आर डेवलप्ड कंट्रीज. सो इन सब कंट्रीज में भी इस चीज़ का दुष्प्रभाव देखा जा रहा है कि कैसे इससे एक पूरी जवान पीढ़ी, एक पूरी पौध खराब हो रही है.
1: बिल्कुल,
0: जैसे हम बात करते थे ड्रग्स का दुष्प्रभाव क्या है और ना बुरी हैबिट्स का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये भी अपने आप में इसका बुरी मतलब डबल एज शॉर्ट तो है ही. आप इधर जैसे मैंने पहले बोला, इसका दुष्प्रभाव दिख रहा है अभी कि कैसे इंसान आपस का कम्युनिकेशन खराब हो गया है और कैसे इंसान इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और दुनिया भर के स्नैपचैट और इन सब चीज़ों पे, कि उसको उनसे वही उसका एक कंफर्ट जोन बन गया है जिससे बाहर निकल के आने में बड़ी तकलीफ हो रही है.
1: सर एक चीज ये भी बताई जाती है, साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो ब्रेन है हमारा वो इस तरीके से डिजाइन है नेचुरली कि वो कंफर्ट को ही एक्सेप्ट करता, प्रेफर करता है, वो एफर्ट्स पर जाना ही नहीं चाहता
0: जी.
1: तो इससे बचने का कोई तरीका, क्योंकि जो फौज बच्चे जा रहे हैं, नए बच्चे जा रहे हैं ट्वेल्थ पास करके जा रहे हैं, तो क्या उसका असर फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बन सकता है, हार्म कर सकता है?
0: देखिए साहब, ये बहुत सबसे जरूरी बात है कि पेरेंट्स को इसलिए जागरूक होना पड़ेगा इस चीज के लिए कि वो अपने बच्चों को उतना ही एक्सपोज करें उनके ग्रोइंग अप ईयर्स में मोबाइल और लैपटॉप पे जितना आवश्यक है. हर चीज़ मोबाइल और हर चीज़ लैपटॉप के माध्यम से अवेयर कराना, उससे पढ़ाना जरूरी नहीं है, किताबें भी जरूरी हैं.
1: किताबें
0: देखिए साहब, आप
1: तो
0: बिल्कुल एयरपोर्ट जाइए, आप देखिए साहब, एक टाइम था कि बहुत लोग किताबें देखते मिलते थे, किताबें पढ़ते मिलते थे, मैगजीन्स बिकना बंद हो गई, न्यूज़पेपर्स का सर्कुलेशन काफ़ी कम हो गया है. तो देयर द टाइम व्हेन यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं, पढ़ना के और भी तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप नहीं जा सकते दूर उनसे, बट येस यू हैव टू गो बैक टू द कन्वेंशनल वेज ऑफ लर्निंग. ये बहुत आवश्यक है,
1: ये बहुत जरूरी है. और सर इसका जैसे हमने कहा कि जो फौज में नए बच्चे जाते हैं उन पर जो असर पड़ रहा है वो आपने क्या महसूस किया है, और उसका फिर मतलब निवारण क्या है, मतलब उसे कैसे बचा जाए ताकि उसका नेगेटिव असर फिर लॉन्ग टर्म में उस तरफ ना जाए?
0: देखिए फौज में, आर्मी में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसके अगेंस्ट में अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए.
1: अच्छा.
0: किस तरीके से दूर रहना है. देखिए फौज में बहुत सारी चीजें स्पियोनाज भी हो जाता है, बहुत सारी चीजें मतलब ना कोई इंसान आपको गलत तरीके से आपको टैप कर सकता है ताकि आपसे इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाए. तो इन सब से भी, ये भी सोशल मीडिया के तरीके से ही होता है. तो फौज ने तो इनफैक्ट फेसबुक पे और बहुत सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया है कि भाई कि एज सर्विंग सोल्जर यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दोज ऐप्स ना.
1: अच्छा, मतलब सोशल मीडिया अकाउंट
0: भी, अकाउंट भी डिलीट कर दिए गए हैं, बैन लगा दिए गए हैं, क्योंकि उन सब से भी आपकी इन्फॉर्मेशन डिसमिनेट होती है. आप भूल जाते हैं कभी कभी, आप कैरी ऑन हो जाते हैं भाई कि इन चीज़ों को लेके कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट देन समबडी इज मॉनिटरिंग यू ऑन द सोशल मीडिया इन चीज़ों से. प्लस आपको पता ही कितने स्कैम्स चलते हैं, कितने फाइनेंशियल स्कैम्स भी हो जाते हैं. तो सोशल मीडिया इज अ नेसेसरी इविल, आई अंडरस्टैंड, बट द फैक्ट इज उसको कैसे कंस्ट्रक्टिव यूज करना है ये बताना, समझाना, सिखाना बहुत जरूरी है.
1: तो सर ये तो बहुत टफ काम है, क्योंकि जिस तरह से हम अभी बात कर रहे हैं कि वो एडिक्शन इतना बढ़ चुका है कि वो बच्चा हो या बड़ा हो तो उसे वो छूट नहीं पा रहा है.
0: तो
1: क्या उसके लिए कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या कुछ ऐसा नया सिस्टम बनाना चाहिए कि जिससे उनको मतलब बचाया जाए?
0: देखिए कुछ चीजें तो
1: डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है
0: जी, जैसे डेवलप कंट्रीज ऐसा कर रही है, कुछ चीजें पॉलिसी फ्रेमवर्क में आनी चाहिए हम लोग के, कि भैया एक बच्चे की ग्रोथ के जो बेसिक ईयर्स होते हैं उनमें सोशल मीडिया का रोल उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है. प्रॉब्ली दे वील कम टू अ टाइम, एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत में भी ये चीज़ें बैन करनी पड़ेंगी. अदरवाइज तो इस चीज़ों का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा दुष्प्रभाव हो गया है कि इनसे एक जनरेशन के अंदर इम्पैक्ट आ गया है, साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल दोनों
1: जी. तो ये जो बातचीत आपसे रही है सर, ये बहुत ही इंसाइटफुल रही. आपने अपने जो करियर के बारे में बताया, आपने जितने बड़े बड़े अचीवमेंट बताए अपने सैनिक स्कूल और पीजीआई को लेकर के, वो बहुत ही इंस्पायरिंग और बहुत ही मोटिवेटिंग है. और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे लिसनर सुन रहे होंगे उनको भी गाइडेंस मिला होगा, खासतौर पर सैनिक स्कूल के एडमिशन को लेकर के जो लोगों ने हमसे बात की.
0: तो थैंक यू सो मच,
1: हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और यहाँ पर आए आप, और बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू सो मच
1: आने के लिए
0: जी.
1: कर्नल वरुण वाजपेयी हमारे साथ रहे. कर्नल वरुण वाजपेयी VSM विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका संदेश टू सोल्जर्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.

0: समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। संस्थान के उपनिदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। गुमला में 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर के संबंध में आज गुमला नगर परिषद कार्यालय सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टी द्वारा नामित BLA2 को PPT के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला उद्योग केंद्र लोहरदगा के सभागार में आज रैप योजना के तहत महिला उद्यमियों के नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक रघुवर सिंह ने महिलाओं को स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बिरसा कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव-गांव जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार मुख्यांश आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 5:02 हुए हैं श्रोताओं। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, गुरुवार की आज की यह शाम बहुत ही खास है और श्रोताओं, इस शाम को और भी खास बनाएंगे कुछ विशेष जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर। दोस्तों, आप सभी को प्रिया का प्यार भरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जमशेदपुर 102.4 मेगाहर्ट्ज। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आपको भारतीय इतिहास के उस काले अध्याय पर ले चल रहे हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वह अध्याय जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सांसें मानो थम सी गई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 25 जून 1975 को लगाए गए उस आपातकाल की, जिसकी क्रूर यादों को भारत सरकार अब हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में याद करती है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वो कौन से हालात थे जिसने भारत के संविधान और लोकतंत्र को कठपुतली बना दिया था। साल 1971 का आम चुनाव, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने क्षेत्र रायबरेली से चुनाव जीता, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी राजनारायण ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया और उनके 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। कुर्सी जाने के डर और सत्ता के नशे में चूर उस समय की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 25 जून 1975 की रात तत्कालीन सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। अगली सुबह भारत के लोकतंत्र और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले लग चुके थे। इस आपातकाल का आखिर अर्थ क्या था? इसका सीधा सा मतलब था मौलिक अधिकारों का हनन। देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी समेत 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया गया। अखबारों की स्याही पर पहरा लगा दिया गया। सत्ता के खिलाफ बोलने वाले हर स्वर को कुचल दिया गया। आइए दोस्तों, अब गहराई से समझते हैं कि उस दौर में आम नागरिकों, संस्थाओं और देश की आत्मा पर क्या गुजरी। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी हमारी प्रेस, जो जनता का आईना होती है, उसे पूरी तरह अंधकार में ढकेल दिया गया। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। सेंसरशिप का ऐसा पहरा बिठाया गया कि बिना सरकारी अधिकारी के अनुमति के एक शब्द भी नहीं छप सकता था। लेकिन इस दमन के बीच भी कुछ साहसी अखबारों ने विरोध का अनोखा रास्ता चुना। कुछ उस समय के प्रसिद्ध अखबारों ने मुख्य संपादकीय पन्नों को पूरी तरह खाली छोड़ दिया। वह खाली सफेद पन्ना सरकार की तानाशाही के खिलाफ चीख चीख कर गवाही दे रहा था। बात सिर्फ नेताओं की गिरफ्तारी या अखबारों पर पाबंदी तक सीमित नहीं थी। आपातकाल का सबसे क्रूर चेहरा आम जनता ने अनिवार्य नसबंदी के रूप में देखा। सत्ता के इशारे पर पुलिस और प्रशासन ने गांवों और कस्बों को घेर कर नौजवानों, बुजुर्गों और राहगीरों को जबरन गाड़ियों में डाला और उनकी नसबंदी कर दी। इसके साथ ही दिल्ली के तुर्कमान गेट पर सालों से रह रहे गरीबों के आशियानों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। जब लोगों ने विरोध किया तो उन पर गोलियां चलाई गई। सत्ता आम जनता की रक्षक से भक्षक बन चुकी थी। संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को भी निलंबित कर दिया गया था। इसका मतलब था पुलिस किसी को भी उठाकर जेल में डाल सकती थी और अदालत भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी। लेकिन सलाखों के पीछे बंद देश के सपूतों के हौसले नहीं टूटे। जेलें विचार विमर्श के केंद्र बन गई। राष्ट्रवाद, समाजवाद और दक्षिण पंथ की अलग अलग विचारधाराओं के नेता एक ही बैरक में बंद थे। इसी जेल यात्रा से देश को एक नया राजनीतिक विकल्प देने की नींव रखी। नागरिक स्वतंत्रता का ऐसा दमन आधुनिक भारत के इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से सरकार ने अपनी शक्तियां इतनी बढ़ा ली थी कि अदालत भी उसे चुनौती नहीं दे सकती थी। लेकिन इतिहास गवाह है, जब जब लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, तब तब जनता की आवाज और बुलंद होती है।
जयप्रकाश नारायण के आवाहन पर देश की जनता सड़कों पर उतर आई। मीसाबंदियों और लाखों सत्याग्रहियों ने अमान्य दर्द सहा, यातनाएं झेली, लेकिन तानाशाही के आगे घुटने नहीं टेके। 21 महीनों के इस कड़े दमन के बाद जब 1977 में चुनाव हुए तो भारतीय लोकतंत्र की असली ताकत दुनिया के सामने आई। अनपढ़ और गरीब समझी जाने वाली भारत की आम जनता ने बैलेट बॉक्स के जरिए साइलेंट रेवोल्यूशन यानी मुक क्रांति कर दी। तानाशाही सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका गया या इस बात का प्रमाण था कि भारत की मिट्टी में लोकतंत्र बहुत गहरा रचा बसा है। जनता के इसी संघर्ष और अदम्य साहस के आगे आखिर सत्ता को झुकना पड़ा। 21 मार्च 1977 को आपातकाल समाप्त हुआ और चुनाव हुए। भारत की जागरूक जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और आजादी के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में सत्तासीन हुई। श्रद्धांजलि के रूप में भारत सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कोई खैरात नहीं है जिसे हमें मुफ्त में मिला है। यह दिन उन लाखों लोकतंत्र सेनानियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने संविधान की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। श्रोताओं, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाना केवल अतीत की कड़वी यादों को दोहराना नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नया सबक है। यह हमें याद दिलाती है कि जब संस्थाएं कमजोर होती है और नागरिक चुप हो जाते हैं तो तानाशाही का जन्म होता है। हमें अपने संविधान की प्रस्तावना में लिखे हर एक शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना होगा। आइए दोस्तों, आज इस विशेष दिन पर हम प्रतिज्ञा करें कि हम सजग नागरिक बनेंगे, अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करेंगे और संविधान के मूल्यों को कभी आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि यह हमारा अपना देश है, भारत। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना प्यारा सा गीत जो कि फिल्म द डिप्लोमैट से लिया गया है। इसके गीतकार थे मनोज मुंतशिर, संगीतकार थे मनन भारद्वाज और अपनी आवाज दी थी हरिहरन ने। श्रोताओं, आपातकाल के उस काले दौर से निकलकर अब हम पलटते हैं इतिहास का एक और महत्वपूर्ण पन्ना। हमारे आज के कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव है सामाजिक न्याय और वीपी सिंह, भारत के सातवें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें देश वीपी सिंह के नाम से जानता है, भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पैरोकारों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, वीपी सिंह का व्यक्तित्व बड़ा ही दिलचस्प और विरोधाभासों से भरा था। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो खुद राजा था, जिसे राजा मांडा कहा जाता था, वह समाज के सबसे आखिरी पायदान पर खड़े लोगों की लड़ाई लड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के मांडा राजघराने में जन्मे विश्वनाथ प्रताप सिंह के पास धन, दौलत और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका दिल गरीबों के लिए धड़कता था। भूदान आंदोलन के दौरान उन्होंने अपनी खुद की हजारों एकड़ जमीन गरीबों में बांट दी थी। वे सत्ता के पीछे नहीं भागे, बल्कि सत्ता उनके पीछे भागती थी। वीपी सिंह सिर्फ मंडल कमीशन के लिए नहीं जाने जाते, रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोफोर्स घोटालों को उजागर कर उन्होंने राजनीति में ईमानदारी की एक नई मिसाल पेश की, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी ही पार्टी और सरकार से बगावत करनी पड़ी। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सिर्फ पिछड़ों को ही नहीं बल्कि दलितों और आदिवासियों को भी उनका हक दिलाने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने का ऐतिहासिक फैसला भी वीपी सिंह की सरकार के दौरान ही लिया गया था। उन्होंने राजनीति के केंद्र में गद्दी को हटाकर नीति और न्याय को ला खड़ा किया। आलोचक भले ही उन्हें राजनीति का एक चतुर खिलाड़ी कहे, लेकिन इस बात में कोई इनकार नहीं कर सकता कि उनके फैसलों ने भारत के लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बना दिया। उन्होंने संसद और विधानसभाओं के दरवाजे उन लोगों के लिए भी खोल दिए जो सदियों से बाहर खड़े थे। साल 1990, तारीख 7 अगस्त, संसद का गलियारा बहुत ही शांत था, लेकिन तभी एक ऐसी घोषणा होती है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया। यह सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, यह सदियों से हाशिए पर खड़े पिछड़े वर्गों को सत्ता और प्रशासन में हिस्सेदारी देने का एक बड़ा संकल्प था। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी को 27% आरक्षण देने के इस फैसले ने सामाजिक न्याय की एक नई परिभाषा लिखी, लेकिन बदलाव की यह राह आसान नहीं थी। राजा मांडा के नाम से मशहूर महलों से निकलकर आए वीपी सिंह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। देश भर में आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और उनकी सरकार भी गिर गई, लेकिन उन्होंने सामाजिक न्याय के अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इतिहास उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद रखता है जिसने अपनी कुर्सी की परवाह किए बिना दबे कुचले समाज को आवाज दी। इसीलिए उन्हें भारत में सामाजिक न्याय का मसीहा भी कहा जाता है। ऐसे महानायक नेता को हमारा शत शत नमन। दोस्तों, अब वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों अंतराल के बाद आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हमने बात की सामाजिक न्याय के मसीहा वीपी सिंह के बारे में। आइए श्रोताओं अब रुख करते हैं हमारे आज के तीसरे और बेहद संवेदनशील विषय की ओर, जिसका सीधा सरोकार हमारे देश से है। एक ऐसा संकल्प जिसे हमें मिलकर पूरा करना है, नशा मुक्त भारत। और जब बात देश को बदलने की हो तो भला हमारे देश के युवाओं से बेहतर यह काम कौन कर सकता है। हमारे देश के पास वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। लेकिन सोचिए अगर इसी ऊर्जा को, इसी युवा शक्ति को नशे की दीमक अंदर ही अंदर खोखला करने लगे तो क्या होगा। नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं बदलता, बल्कि एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ देता है। और जब एक परिवार बिखरता है तो देश का विकास रुक जाता है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी देश को बर्बाद करना हो तो वहां के युवाओं को नशे की लत लगा दो। आज हमारा भारत दुनिया का सबसे युवा देशों में से एक है, लेकिन इस युवा शक्ति को नशे का घुन खोखला करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वह सिंथेटिक ड्रग्स हो, शराब हो या बढ़ता हुआ डिजिटल नशा, यह हमारे युवाओं की रचनात्मक और ऊर्जा को दीमक की तरह चाट रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार भी हमारे युवा ही है। नशा मुक्त भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश का हर नौजवान इस मुहिम का सिपाही न बन जाए। सरकार नशा मुक्त भारत अभियान चला रही है, कानून तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ कानून से बदलाव आएगा? बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तब आएगा जब हमारे देश का युवा जाग उठेगा, क्योंकि युवा सिर्फ देश का आज नहीं बल्कि आने वाला कल है। तो इस मुहिम में युवाओं की भूमिका क्या हो सकती है? बहुत ही आसान है, बस तीन बातें दोस्तों हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली बात, आप ना कहना सीखें। किसी भी पीयर प्रेशर या दोस्तों के दबाव में आकर चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं वाली सोच को आज ही छोड़ दें। नशा करना कूल नहीं बल्कि खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। दूसरी बात, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। आप रील्स बनाते हैं, पोस्ट शेयर करते हैं, क्यों ना इस ताकत का इस्तेमाल नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए किया जाए। आपकी एक वीडियो से किसी की जिंदगी बच सकती है। तीसरी बात, हाथ थामिए, पीठ मत फेरिए। अगर आपका कोई दोस्त इस दलदल में फंस गया है तो उससे नफरत मत कीजिए, उसे संभालिए, उसे डॉक्टर या रिहाब सेंटर तक पहुंचाइए, उसे आपकी हमदर्दी की जरूरत है। याद रखिए दोस्तों, जब युवा ठान लेता है तो इतिहास बदल जाता है। आइए आज इस मन से हम सब संकल्प ले, न खुद नशे को हाथ लगाएंगे और न अपने आसपास किसी की जिंदगी को बर्बाद होने देंगे। युवाओं की यही हुंकार बनाएगी नशा मुक्त भारत सरकार। उठाओ कदम, बदलो कल। युवाओं का मन जब कुछ करने को ठान लेता है तो वह करके ही रहता है, क्योंकि युवाओं का यह दिल लक्ष्य को पाने के लिए जिद्दी है। युवाओं के इसी जज्बे को सलाम करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अभी आपने सुना एक प्यारा सा गीत जो कि फिल्म मैरी कॉम से लिया गया है। इसके गीतकार थे प्रशांत इंगोले, संगीतकार थे शशि सुमन और अपनी आवाज दी थी विशाल ददलानी ने। और दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमारे आज के अंतिम खंड का। चलिए जल्दी से लेते हैं आज का क्विक डोज। देश के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ मॉनसून की प्रगति पर लगातार नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। भारत की अध्यक्षता में आज से गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीका ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। प्रधानमंत्री ने विज्ञान भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में युवाओं के लिए 2400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की है। ये इस योजना से अब तक लगभग 70 लाख नौकरियां सृजित हो चुकी हैं। इस हफ्ते इंडियन नेवी अग्निवीर यूपी एक्साइज कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। आखिरी तारीख 30 जून 2026 है। यूपी पुलिस ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। इसके फिजिकल टेस्ट 29 जून से शुरू हो रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने टेक्नीशियन के 6,565 से अधिक पदों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होकर 29 जुलाई 2026 तक चलेगी। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमने इतिहास के काले अध्यायों से सीख ली, सामाजिक न्याय के नायकों को याद किया, नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया और वर्तमान की गतिविधियों को समझा। उम्मीद है आज का यह सफर आपके विचारों को एक नई दिशा देगा। चलते चलते बस इतना ही कहूंगी, सतर्क रहें, जागरूक रहें और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें। अपनी दोस्त प्रिया को दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे नई सोच, नए विषय और नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।

0: Akashvani at 90.
1: ये आकाशवाणी जमशेदपुर है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है श्रमिक बंधुओं को संबोधित कार्यक्रम कल कारखाने।

श्रमिक साथियों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता। कैसे? जैसे हम सुबह जागते हैं, सुबह जाकर जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, घर का कुछ काम हो तो उसे निपटाते हैं और उसके बाद जल्दी में ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दिन भर ऑफिस में कई तरह के तनाव झेलते हैं, काम का प्रेशर रहता है, उसके बाद फिर देर रात हम घर आते हैं, फिर से सो जाते हैं, उसके बाद से दूसरे दिन फिर से वही रूटीन चल पड़ता है। अपने लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, है ना? हमें सब कुछ जरूरी लगता है केवल अपने सिवा, है ना? यहाँ तक कि हमें अपने स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं रहती और घर के कामों में या फिर बच्चों की फीस भरनी है, ये काम करना है, वो काम करना है, कई सारे काम होते हैं घर के जो कि हमें ज़रूरी लगते हैं, और इन सारी चिंताओं के बीच हम अपने स्वास्थ्य की ज़रा भी परवाह नहीं करते हैं। अपने तथा अपनों के लिए सुविधाएं जुटाने में हमें अपनी सेहत का ज़रा भी ध्यान नहीं रहता। हम अपने खान पान के बारे में भी लापरवाह हो जाते हैं।

श्रमिक साथियों, जब यही तनाव भरा रूटीन हमेशा चलता रहता है तो एक समय तक हमारा शरीर इसे झेल जाता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब हम बीमार पड़ते हैं तब दवाइयों का एक अनवरत क्रम चल पड़ता है जो कि कभी कभी जीवन पर्यंत चलता है। श्रमिक बंधुओं, हम स्वस्थ रहें, हमें दवाइयों की जरूरत ना हो, इसके लिए यदि हम अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करें तो हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। योग न सिर्फ शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति का भी अनुभव हम करते हैं। जैसे कि कभी भी कोई भी तनाव हो, वो घर का हो या फिर ऑफिस का, हमें योग करने से, मेडिटेशन करने से शांति मिलती है, मन शांत होता है और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति मिलती है। श्रोताओं, योग के साथ साथ हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने ही खान पान पर नहीं, बच्चों के खान पान पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बड़े तो कभी कभी सही

नियम बरतते हैं और बाहर खाने से परहेज करते हैं, पर हम अपने बच्चों को रोक नहीं पाते और उनकी निर्भरता घर के खाने से ज्यादा फास्ट फूड पर बढ़ जाती है, जिससे कि बच्चों में कई तरीके की बीमारियां पनपती हैं, मोटापा होता है, बच्चों का मोटापा भी होता है और बड़े भी, आजकल बच्चे तो क्या, बड़े भी फास्ट फूड पर ज़्यादा ही निर्भर रहने लग गए हैं, इसलिए उन्हें भी कई बीमारियां जकड़ लेती हैं और अंत में यही होता है कि बस दवाइयों पर ही चलना होता है। इसलिए योग करें, स्वस्थ रहें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। और हाँ श्रोताओं, हमें अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि मनोरंजन। और मनोरंजन के लिए अच्छे संगीत से बेहतर कुछ भी नहीं। तो आइए सुनते हैं एक गाना।

लता मंगेशकर, नितिन मुकेश और साथियों के स्वरों में क्रांति फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। शब्दकार थे संतोष आनंद और इसके संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रमिक बंधुओं, हमारा शहर जमशेदपुर प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, तो चलिए आज चलते हैं दलमा की हसीन वादियों में। सुनते हैं वार्ता, विषय है दलमा पर्यटन, रोमांचक पर्यटन। वार्ताकार हैं एन वेंकटेश्वर राव।
4: अपने राज्य झारखंड में जैव विविधता की प्रचुरता है। यह डक्कन प्रायद्वीप जैव भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। इस प्रांत के भूभाग का लगभग 30% हिस्सा वन क्षेत्र है और यह छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र विपुल वन संसाधनों से समृद्ध है। झारखंड राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 10 वन्य जीव अभयारण्य अवस्थित है। इन्हीं में से एक है दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लौह नगरी जमशेदपुर के पार्श्व में महज 16 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। प्रकृति का अतुल्य उपहार दलमा। जी हाँ, दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के पहाड़ी जंगलों में समृद्ध फ्लोरा एंड फौना की मौजूदगी इसे बेहतरीन प्राकृतिक सुंदरता तथा रमणीक विविधता प्रदान करती है। वास्तव में दलमा के रूप में प्रकृति देवी अपने यौवन की पराकाष्ठा पर प्रतीत होती है और इस मनोहरी दृश्यावली के सानिध्य में एक विशाल औद्योगिक नगरी का भी दिल स्पंदित होता है। मानो तपते लोहे की तपिश को शुद्ध एवं सौम्य दलमा की बयार प्राकृतिक शीतलता से सरोवर कर रही हो। धरती का भीमकाय प्राणी हाथी अपने झुंड में यहाँ निवास कर मनुष्य एवं वन्य प्राणी के सह अस्तित्व में रहने की हमारी भारतीय परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। इन्हीं गजराजों की बहुलता के चलते दलमा को हाथियों का स्वर्ग भी कहा जा सकता है। वर्ष 1976 में तत्कालीन बिहार सरकार ने संपूर्ण दलमा वन क्षेत्र को वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित किया था। आज्ञानी के रूप में इसे घोषित करने का मुख्य उद्देश्य जंगल एवं वन्य प्राणियों को सुरक्षित करके, वनस्पतियों को संरक्षित करके इसे पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना बनी। दलमा पर्वत श्रृंखला अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य की वह अकेली श्रृंखला है जो व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग के एकदम निकट होते हुए भी शांति एवं भरपूर प्राकृतिक संपदा संपन्न संपूर्ण वन का अनुभव कराती है। 193 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस दलमा श्रृंखला का आकार चौड़े झलक वाले चाकू के जैसा है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 984 मीटर है। समशीतोष्ण जलवायु वाले इस क्षेत्र में मिश्रित साल के वन प्राकृतिक छटा को अनुपम बनाते हैं। इसका 35 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया है, जबकि बाकी बफर एरिया इस सेंचुरी में वनों से पर्याप्त छोटी बड़ी पहाड़ियाँ, गहरी घाटियाँ, अनेक जल स्रोत, तथा पहाड़ियों के बीच खुले मैदान हैं, जो वनस्पति एवं वन्य प्राणियों के लिए निवास की विविधता प्रदान करते हैं। इसके एक पार्श्व से झारखंड की प्रसिद्ध स्वर्णरेखा नदी बहती है और इसी के दूसरे किनारे से लंबाई की ओर ही राष्ट्रीय उच्च पथ 33 गुजरता है, जो राजधानी रांची से आते हुए कोलकाता महानगर की ओर जाता है।

0: तरह विभिन्न प्राकृतिक विशेषताओं का समागम इसके नैसर्गिक सौंदर्य में अधिवृष्टि करता है और विशेष जानकारी के साथ ये उपस्थित है। आश्रयणी में स्थित जल स्रोत, बांस के मैदान, हाइडआउट, अनेक कृत्रिम तथा प्राकृतिक जलाशयों के प्रबंधन के फलस्वरूप यहाँ हाथियों की संख्या सैकड़ों में है। साथ ही इसके सीमांत राज्य पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से भी हाथियों का आवागमन होते रहता है। जल स्रोतों के नाम बड़े रोचक हैं, बड़का बांध, मझला बांध, निचला बांध, तालाब, स्नान घाटी। इस तरह यह एक अंतर्राष्ट्रीय गज कॉरिडोर व महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही नहीं, देश के प्रथम गज आरस सिंहभूम गज आरस का सृजन वर्ष 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत किया गया। पूर्वी एवं पश्चिम सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिलों में फैले इस रिजर्व का क्षेत्रफल 13,440 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह अन्य वन क्षेत्रों के साथ साथ इसमें संपूर्ण दलमा आश्रयणी सम्मिलित है। इस रिजर्व की स्थापना राज्य में हाथियों के योजनाबद्ध तरीके से वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु की गई है। इसका मुख्य लक्ष्य हाथियों, उनके वास स्थलों तथा प्रवासन मार्गों का संरक्षण, मनुष्य हाथियों के बीच हित टकराव की गंभीर समस्या वाले क्षेत्र में टकराव कम करना, इनके पास वास स्थलों में पालतू पशुओं के दबाव का नियमन करना तथा शिकारियों से इनकी सुरक्षा करना है। अपने मदमस्त हाथियों के अतिरिक्त दलमा में मृग प्रजातियों की बहुतायत में है। माकुला कोचा में 10 एकड़ क्षेत्रफल में मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई है। इसके तहत मृग प्रजातियों को अनुकूल एवं संरक्षित वातावरण में प्रजनन करा के दलमा में ही वास कराया जा रहा है। हाथी, हरिण के अलावे अन्य वन जीवों में बंदर, जंगली सुअर, जंगली कुत्ते, भालू, हाइना जैसे जानवर भी दलमा जंगल में विचरण करते हैं। शुष्क मिश्रित पर्णपाती वनों में राजकीय वृक्ष साल की प्रमुखता है। अन्य वृक्ष प्रजातियों में बहेड़ा, जामुन, घोरा, केंदु, करम आदि भी मौजूद हैं। दलमा के वनस्पति एवं जैव जगत, हाथियों के उत्पत्ति एवं विकास तथा अन्य संबंधित सूचनाओं की जानकारी प्रदान करने हेतु मृग प्रजनन केंद्र के सामने एक संग्रहालय या इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। यहीं मकुला कोचा में ही पर्यटकों हेतु आरामदेह कॉटेज का भी निर्माण किए गए हैं। दलमा की मनोहरी दृश्य को अवलोकन करने, प्रकृति की निकटता को आत्मसात करने हेतु दलमा पहाड़ पर आवासन की भी सुविधा है। पिंद्राबेड़ा में वन विभाग का रेस्ट हाउस है। यहाँ रात्रि विश्राम का एक अलग ही आनंद एवं रोमांच है। अंधेरी रात्रि में यहाँ से चकाचौंध करते जमशेदपुर शहर का नजारा देखने में ऐसा लगता है मानो लाखों तारे जमी पर टिमटिमा रहे हों। वास्तव में प्रकृति एवं प्रगति का यह संगम टिकाऊ विकास की परिस्थिति की अभयारण्य की अनुभूति का दर्शन कराता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार दलमा पहाड़ का नामकरण आराध्य देवी दलमा माई के नाम पर हुआ है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी इसका अति महत्व है। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बाबा दलमेश्वर का प्राचीन मंदिर है। चट्टानों को काटकर बनाए गए इस गुफा मंदिर में शिवरात्रि एवं श्रावण माह में शिव भक्तों की भारी भीड़ एकत्रित होती है। चट्टानों की बात चली तो दलमा पहाड़ के संरचना एवं शैल प्रकृति पर जानकारी दे रहे हैं। उत्साही भूगर्भशास्त्र शोधार्थी श्री विनय कुमार ठाकुर, ये नहीं चाहिए ना, देश के अन्य वनों को के विपरीत दलमा पोचिंग यानी अवैध शिकार की समस्या से तो वैसे मुक्त है, परंतु इस क्षेत्र की एक स्थानीय वार्षिक परंपरा सेंद्रा के चलते इन निर्दोष वन्य प्राणियों का शिकार हो जाया करता है। वन प्रशासन, स्थानीय संगठन एवं प्रबुद्ध ग्रामीणों का प्रयास सफल प्रतीत हो रहा है और सांकेतिक सेंद्रा मनाने के चलते विगत कुछ वर्षों से शिकार में भी कमी आई है। इस तरह प्राकृतिक वनों की भूमि, हाथियों का स्वर्ग दलमा, वनस्पति एवं वन्य प्राणी संरक्षण तथा पर्यावरण संतुलन बरकरार रखने के हेतु हमें अभिप्रेरित भी करता है। दलमा का पर्यटन वास्तव में रोमांचक पर्यटन का पर्याय है। वर्ष 1976 में तत्कालीन बिहार सरकार ने संपूर्ण दलमा वन क्षेत्र को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया था। आश्रयणी के रूप में इसे घोषित करने का मुख्य उद्देश्य था जंगल एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण तथा संवर्धन। इस तरह वन्य प्राणियों को सुरक्षित करके, वनस्पतियों को संरक्षित करके इसे पर्यटन केंद्र के रूप में भी विकसित करने की योजना बनी।
1: दलमा पर्यटन रोमांचक पर्यटन, इस विषय पर अभी आप वार्ता सुन रहे थे श्रोताओं। वार्ताकार थे एन वेंकटेश्वर राव और श्रमिक साथियों, इसके साथ ही आज का कल कारखाने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। पूनम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

कल कारखाने, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज संध्या 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। ये प्रसारण आप सुनेंगे मैच के समापन तक। एक बार पुनः सुने श्रोताओं, संध्या 6:30 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल मैच के समापन तक। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी उसके बाद अंग्रेजी में। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम सुनने वालों को हमारा जोहार। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं, आइए सुनते हैं संताली लोकगीत। कलाकार हैं उमापदो मुर्मू एवं साथी। आइए सुनते हैं ये पहली प्रस्तुति।

झारखंड के लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में श्रोता सुन रहे थे संताली लोकगीत, कलाकार थे उमा पदो मुर्मू। और श्रोताओं, इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

झारखंड के लोकगीत, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। श्रोताओं, आपको जानकारी दे दें, आज संध्या 6:30 से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के अंतर्गत ओल्ड ट्रेफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। प्रसारण आप सुनेंगे मैच के समापन तक।

ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:20 होने ही वाले हैं श्रोताओं, कुछ ही क्षणों में संस्कृत में समाचार सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए।

0: जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 MHz पर। शाम के 6:30 हो रहे हैं श्रोताओं, आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी दिल्ली के प्रसारण से, जहां से आप सुनेंगे ICC 20।
1: फर्स्ट बॉल 20।
2: 25 जून वो तारीख जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, क्योंकि आज ही 1983 में इंग्लैंड की भूमि पर भारत

0: लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
1: In a fair and equitable manner.
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जाँच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1,700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद

0: वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा AI, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में

0: राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने

0: Philadelphia and US at 1:30 Indian time. In another Group E fixture, Ecuador will face Germany at East Rutherford in at 1:30 a.m. IST. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का जमशेदपुर केंद्र है FM 102.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब संपन्न होती है हमारी आज की सभा। इसी फ्रीक्वेंसी पर कल सुबह 5:55 पर अपने कार्य